FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: خدمت. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार

0: अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 110.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आप जानेंगे हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद प्रातः 6:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चिंतन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आपके लिए प्रसारित होगा 6:15 पर। गीत बहार फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:45 पर। 7:20 पर सुनेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस कान। कार्यक्रम नमस्कार चूरू का प्रसारण होगा 7:30 पर। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, समय रहेगा 8:00 और 8:15 का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संगम सुनेगा 8:30 पर। आकाशवाणी केंद्र जयपुर से रिले किए जाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार 9:00। FM चूरू से आप सुन सकते हैं देशगान 9:10 पर और कार्यक्रम साहित्य सुगंध का प्रसारण होगा 9:15 पर। फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक सुनेगा 9:30 पर। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र मुंबई से 10:00। 11:05 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुर बहार सुनेगा दोपहर 12:30 पर आप सुन सकते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र जयपुर से 1:00। महिलाएं सुन सकेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत, समय रहेगा 1:05 का।

न्यूज और दोपहर समाचार सुनेगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से दोपहर 2 बजे और दोपहर 2:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनेगा एफएम चूरू से दोपहर 2:30 पर। हमारी आज की सायंकालीन सभा में शाम 4:53 पर आप सुन सकते हैं, माफ कीजिएगा 3:53 पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान की 25वीं किस्त जारी करने का प्रसारण। युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी शाम 5 बजे। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार शाम 6 बजे, अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। एफएम चूरू से आप सुन सकते हैं देशभक्ति फिल्मी गीत शाम 6:10 पर। शाम 6:20 पर सुनेगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले संस्कृत में समाचार। हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 6:30 पर। इन्हें हम आकाशवाणी केंद्र जयपुर से रिले करेंगे। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा शाम 6:40 पर और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी, समय रहेगा शाम 7 बजे का। राजस्थानी लोक संगीत एफएम चूरू से सुनेगा शाम 7:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता पेशे खिदमत होगा रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:45 पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले समाचार संध्या। News@9 का प्रसारण होगा रात्रि 9 बजे। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। कार्यक्रम चित्र भारती रिले किया जाएगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे सुनेगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से ही आप सुनेंगे हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपने जाना हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। प्रातः के 6:10 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।

मिली हुई मदद को कभी नहीं भूलें। शुरू मदद, हम इसको अपने जीवन में एक गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर मिला हुआ एक ऐसा एहसान मान सकते हैं, एक ऐसा नैतिक कर्तव्य मान सकते हैं जिसका हमें हक नहीं होता है, बल्कि सामने वाले की मर्जी पर, सामने वाले के भावनाओं पर आधारित होता है। यदि कोई व्यक्ति आपको संकट के समय मदद करता है तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा काम है जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर रहे होते हैं, और अगर अपेक्षा भी कर रहे होते हैं तो बिना अधिकार पूर्वक उसकी अपेक्षा होती है। और अगर ऐसे में यह हमें मिलती है मदद और संकट के समय, तो आप समझिएगा कि आपका संकट बहुत हद तक दूर होने की उसमें संभावना छुपी हुई होती है। और मदद को कभी इसलिए भी नहीं भूलना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति ने जो मदद की है वो आपको केवल उसका मूल्यांकन हम किसी भी रूप में, मुद्रा के रूप में, या उसका आकलन वैल्यूएशन कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी छोटी सी मदद कितना बड़ा सहारा हो सकती है।

इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, डूबते को तिनके का सहारा। अब किसी बहुत बड़े व्यक्ति को एक तिनका उसके जीवन में बहुत मामूली सा व्यक्तित्व रखता है, लेकिन कई बार संकट की परिस्थिति में वो एक तिनका भी, एक क्षुद्र सा तिनका भी हमारा जीवन बचा सकता है। ऐसे ही हम पता नहीं कौन सी विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए हैं, वहाँ पर एक छोटी सी मदद हमारा पूरा शेड्यूल, हमारा पूरा भाग्य, हमारा पूरा दिन बदल सकती है। इस चीज़ को आप अपने अनुभव, अपनी फीलिंग और अपने साथ घटी घटना के बारे में सोचकर इसका आकलन कर सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, ट्रेन छूटने में मात्र एक मिनट की या कुछ सेकंडों की देरी है, और ऐसे में आपको कोई व्यक्ति कोई ऐसी हेल्प करे जिससे कि आपकी ट्रेन छूटने से वंचित नहीं रह जाएं आप, तो आपका कितना बड़ा एक ऐसा काम हुआ कि अगर वह ट्रेन छूट जाती, उस व्यक्ति की मदद के किए बिना वह ट्रेन छूट सकती थी, लेकिन किसी व्यक्ति ने आपको मदद की और उसकी मदद से आपको वो ट्रेन में आप बैठ सके। आपका पूरा आगे का जो शेड्यूल है उसमें आपको कितना लाभ मिल सकता है, ये हमने उस अनुभव से हम सीख सकते हैं। ऐसे ही जीवन में अनेक और घटनाएं हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संकट में अगर कोई मदद मिलती है तो उसको जहन में रखना चाहिए, और हमें भी हमारा नैतिक कर्तव्य मानते हुए भविष्य में उस व्यक्ति को या जो कहीं भी कोई व्यक्ति उपलब्ध हो सके सहायता के लिए करनी चाहिए।

FM 107 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज आप सुनेंगे देवाशीष दास गुप्ता की आवाज में कबीर अमृतवाणी।

श्रोता भी सुन रहे थे देवाशीष दास गुप्ता की आवाज में कबीर अमृतवाणी। इसी के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी।

0: शुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चोरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: FM जूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। आइए सुनते हैं मनहर उदास और अनुराधा पोडवाल की आवाजें। इस गीत के लिए शब्द हैं आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार की आखिरी पेशकश सुनते हैं भूपेंद्र और आशा भोसले की आवाजें। संगीत है बप्पी लहरी का और शब्द हसन कमाल की।

0: आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाज़ों के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार यहीं संपन्न होता है। FM 110.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति रचना का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे एपिसोड नंबर 04। गायक कलाकार हैं लक्ष्मी शंकर और सुरेश वाडेकर। संगीत है सतीश भाटिया का।
1: एपिसोड नंबर 4।

श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हुए संत गुरु तथा देव समाज की वंदना के साथ गोस्वामी तुलसीदास ने उसी विनीत भाव से खल वंदना भी की है। उन्होंने दुष्टजन को विनम्र प्रणाम किया है जो बिना प्रयोजन ही हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, जिनको दूसरे के उजड़ने से हर्ष तथा बसने से विषाद होता है। दुष्टों की ये रीति है कि वे शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर ईर्ष्या की आग में जल उठते हैं, किंतु संतों और दुष्टजन में एक लक्षण समान होता है। जहां संतजन का विछोह प्राण हर लेने वाला होता है, वहां असज्जन का मिलना दारुण दुख देने वाला होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने खल वंदना तो की है, किंतु अत्यंत प्यार से पाले जाने पर भी क्या कौवे मांस खाना छोड़ देते हैं?

श्रोता भी सुन रही थी लक्ष्मी शंकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में श्री रामचरित मानस गान। FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। मनीष भारद्वाज का

श्रोताओं, जिंदगी में बहुत से शख्स ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में जब शामिल हो जाते हैं तो जीवन का मजा ही कुछ और होता है, जीवन का रंग ही कुछ और होता है। और बात करें एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे रिश्ते की, वो है मित्रता। जब किसी व्यक्ति के जीवन में किसी मित्र का आगमन होता है तो आप मानिएगा उसके जीवन में बदलाव ज़रूर होता है, और वो बदलाव हम ही कोशिश करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव हो, तो मित्रता जिंदगी भर कायम रहती है। जी हाँ श्रोताओं, जीवन में मित्र निभाते हैं अहम भूमिका। इस मुद्दे पर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। नो डाउट, ऑब्वियसली ये बात तय है कि जीवन में मित्र अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन याद रखिएगा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम ऐसे मित्रता भी कई बार कर बैठते हैं जो मित्र प्रेम में कुछ भी नैतिक अनैतिक ना देखते हुए जीवन का नुकसान कर बैठते हैं। और ऐसा भी होता है इसका दूसरा पहलू कि वही मित्रता हमें बहुत आगे बहुत ऊपर उठा देती है, क्योंकि एक और एक मित्र मिलकर दो मित्र नहीं होते, वो 11 शख्सियतों के बराबर हो जाते हैं। हमें भी ऐसा ही करना है कि जीवन में ऐसे मित्र को चुनें, जीवन में ऐसे मित्र को स्थान दें जो आपके जीवन का उत्थान करे। और ना केवल वो हमारे जीवन का उत्थान करें, हमारा व्यक्तित्व ऐसा बने कि हम उसके जीवन का उत्थान करें। और ऐसा ही होगा तब कि परस्पर एक दूसरे का उत्थान ही हो गया, उत्थान ही होगा, उन्नयन ही होगा, जीवन ऊपर ही बढ़ेगा दोनों मित्रों का। इसलिए मित्रता जीवन के उन रंगों में से है जो जीवन को सतरंगी बनाती है।

अनेक मौकों पर ऐसा भी होता है श्रोताओं दोस्तों कि हम मित्रता का जो कालखंड होता है उसमें वो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जो स्वार्थ के कारणों से होती है। इसलिए मित्रता के बीच में स्वार्थ को कभी भी ना आने दें। मित्र और मित्रता एक बिना किसी कैटेगरी का एक ऐसा रिश्ता होता है जो केवल प्रेम, केवल शुद्ध भावना पर आधारित होता है। इसलिए जीवन को मित्रता के रंगों में रंगने दें और चलने दें जीवन का आगे का सफ़र।

0: खेलों में भारत के बढ़ते कदम, आइए श्रोताओं इस विषय पर पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया से अमित कुमार की भेंट वार्ता सुनते हैं।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। साथियों, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। विगत 12 वर्षों में खेलों की अवसंरचना में लगातार बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज भारत है विश्व महाशक्ति के रूप में उभरा है। 2026 के पैरा ओलंपिक, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स एवं पैरा एशियन गेम्स में भारत के लिए अवसर बहुत अधिक बढ़ गए हैं। और न केवल पैरा कॉमनवेल्थ एवं पैरा एशियन, हम पैरा ओलंपिक की भी बात करेंगे। तो किस प्रकार से भारत के अवसर बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हमारी क्या संभावनाएं रहेगी, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पद्म भूषण श्रीमान देवेंद्र झाझड़िया जी को। आप भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, तो सबसे पहले सर आपका स्टूडियो में स्वागत है। सर
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर जब हम बात करते हैं खेलों की, तो पिछले 12 वर्षों में खेलों के अवसंरचना में काफी बदलाव आया है और मानसिकता में भी काफी बदलाव आया है, तो किस प्रकार का बदलाव आप देखते हैं?
2: मेरे ख्याल में जो 12 साल में जो बदलाव आया खेलों में, वो एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है। इतना बड़ा परिवर्तन मेरे ख्याल से 12 साल में कभी भी नहीं हुआ। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों और खेल दोनों को बहुत पसंद करते हैं। एक समय होता था जब हिंदुस्तान खेलों में कोई ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन आज आप देखते हैं, मैं आपको आंकड़ों के साथ कह सकता हूँ, पेरिस पैरा ओलंपिक और ओलंपिक,
1: जी जी,
2: ओलंपिक में भले ही हम उम्मीद के मुताबिक हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ओलंपिक में 4th, 5th और 6th में हमारे 17 खिलाड़ी रहे थे।
1: जी जी।
2: लेकिन जैसे ही पैरालंपिक स्टार्ट हुआ, और मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें मैंने बोला था अब की बार 25 पार,
1: जी जी,
2: और हमने 29 मेडल जीत करके मेडल टैली में 18वें नंबर पे रहे। और इसका आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ, एक जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने एक जारी किया था कि सबसे ज्यादा मेडल में किसी ने ग्रोथ की है तो वो इंडिया ने की।
1: जी जी।
2: तो ग्रोथ के मामले में इंडिया नंबर 1 रहा पेरिस पैरालंपिक में। आपने बात की आने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और एशियन और पैरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ तो साथ में होते हैं, एक ही होता है कॉमनवेल्थ, मेडल टैली में सेम ही काउंट होते हैं पैरा का और एबल का, लेकिन पैरा एशियन अलग होते हैं, एशियन अलग हैं। कॉमनवेल्थ की बात करूं, बहुत ही शानदार हमारे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हुई है, और पहली बार मैंने खुद ने एक मीटिंग ली थी, खेल को स्वच्छ बनाए, ये भारत सरकार का था। उसका मतलब ये होता है कि जब हमारे खिलाड़ी जाएंगे तो जैसे कहीं डस्टबिन है वहाँ पे हमें कूड़ादान में डालना है, कोई भी हमें अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना है, किसी को घूरना नहीं, हमें बुरी नज़र से नहीं देखना है, किसी की तरफ एग्रेसिव नहीं होना है, ये हमारे संस्कार है।
1: जी जी।
2: ये जो पुराने संस्कार थे हमारे, वो संस्कार भी है। और कॉमनवेल्थ के बारे में कहूँ आपको, विशेष तौर पर पैरा कॉमनवेल्थ के, मुझे क्योंकि यहाँ पैरा कॉमनवेल्थ में हमारे बहुत कम इवेंट होते हैं, लेकिन अब की बार हम पैरा कॉमनवेल्थ में जो पैरा खिलाड़ी हैं वो ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे, वो हाईएस्ट मेडल जीतेंगे, आज तक के इतिहास का सबसे ज्यादा मेडल जीतेंगे, ये मैं आकाशवाणी में घोषणा करके जा रहा हूँ।
1: जी, बहुत ही सुखद बात है, और हमें उम्मीद भी है कि जो आप घोषणा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कार्यान्वित भी होगी, और देश का मस्तक है वो, तिरंगे की शान है वो लहलहा उठेगी। जब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स की, तो जो खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो बहुत अधिक विशेष होती है, ताकि वो मेडल जीत सके, तो कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो दी जाती है?
2: देखिए, 12 साल में जो बदलाव आया सुविधाओं का, ये इतना बड़ा बदलाव है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जो वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लेकर के आए। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में जो खिलाड़ी आता है उसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है।

0: चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो होती है पॉलिसी और एक होती है पॉलिसी इम्प्लीमेंट। तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट बहुत ज़बरदस्त हुआ है। खिलाड़ी एक मेल डालता है मिनिस्ट्री के पास कि मुझे यूरोप ट्रेनिंग पे जाना है, सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के भी अधिकारी हैं और एक पीएमओ का अधिकारी रहता है
1: जी।
0: तो उसमें क्या होता है, जैसे ही खिलाड़ी कुछ सुविधाएं मांगेगा, वो इंडिया में ट्रेनिंग करना चाहता है, बाहर ट्रेनिंग करना चाहता है, उसको पूरा संपूर्ण खर्चा भारत सरकार उठाती है। फिर मोदी जी ने कहा कि खिलाड़ियों का तो हम खर्चा उठा ही रहे हैं। उन्होंने देखा कि कई ऐसे किसान फैमिली से बच्चे आए, ऐसे मजदूरों के बच्चों ने मेडल जीता, तो उन्होंने कहा इस फैमिली का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 50,000 रुपये पर मंथली पॉकेट मनी दी जाती है खिलाड़ी को कि तेरे परिवार को भी ध्यान रख पाई
1: जी।
0: ये दर्शाता है। और जो आधुनिक सुविधाएं दी हैं भारत में, आप देख रहे हो जूनियर लेवल पे हमने जो परफॉर्मेंस दी है, यही नतीजा है कि आने वाले समय में भारत एक अग्रणी देश होगा स्पोर्ट्स में।
1: जी, हम बात कर रहे थे पैरा कॉमनवेल्थ एवं पैरा एशियन गेम्स में, और आपने किस जिस प्रकार से हमें आशान्वित किया है कि भारत है वो बहुत अधिक अच्छा प्रदर्शन करेगा। खेल के प्रति ऐसा लगाव भी ऐसा है कि हम हमारे खिलाड़ियों से बहुत अधिक उम्मीदें करते हैं और अधिकतर हमारी उम्मीदें पूरी भी करते हैं, लेकिन क्या वजह रहती है कि जो ओलंपिक में हम जाते हैं तब हमारा प्रदर्शन इतना मानक के अनुरूप नहीं रह पाता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार भी हम जब ओलंपिक लॉस एंजेलिस में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम प्रदर्शन करेंगे
0: 100%। एलए में जो ओलंपिक पैरालंपिक होने जा रहा है, मैं आपको बताऊं पैरालंपिक में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जैसे नियर टॉप 10 पहुंचे
1: जी।
0: और जब टॉप 10 में आप आते हो तो हमारा जो संकल्प है
1: जी
0: 2047 विकसित
1: विकसित भारत,
0: तो उसमें पहला टारगेट यही है कि टॉप 10 में आना। तो सबसे पहले विकसित भारत की कोई सीढ़ी चढ़ेगा वो दिव्यांग खिलाड़ी चढ़ेगा
1: जी जी जी।
0: ये अपने आप में बड़ी बात है। खेलों में जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो ट्रेनिंग प्लान है भारत सरकार का, स्पोर्ट्स साइंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जूनियर खिलाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ एलए में हमारी पूरी टीम बहुत शानदार परफॉर्मेंस
1: जी। आप स्वयं बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और आपने देश का नाम भी है बहुत बार गौरवान्वित किया है, वर्तमान में आप भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी है, तो जब आने वाले समय में अहमदाबाद में भी कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होंगे और साथ साथ भारत सरकार है 2034 में ओलंपिक को भी होस्ट करने के लिए प्लानिंग चल रही है, तो उस परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की तैयारियों की जरूरत है?
0: देखिए, भारत की लीडरशिप, नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप है, दुनिया ने उसको माना कि भारत कुछ भी कर सकता है। उसी श्रेणी में हमें कॉमनवेल्थ की मेजबानी मिली, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सेकेंड टाइम भारत कॉमनवेल्थ गेम्स कर रहा है, कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। मैं बताना चाहता हूँ, यदि हमारे 2036 की जो ओलंपिक पैरालंपिक है, हमने दावा किया है मेजबानी का, उसमें सबसे बड़ी हमारी कोई ताकत होगी तो ये कॉमनवेल्थ गेम होगा। हम अच्छा कॉमनवेल्थ गेम करवाएंगे। इससे आगे कुछ परफॉर्मेंस देखी जाती है कि प्लेयर वहाँ के कैसे हैं, तो उसमें जैसे हम मेडल टैली में पैरालंपिक में हम 18वें नंबर पे रहे, इसका मतलब ये है कि गेम में भी भारत स्ट्रांग है
1: जी जी।
0: भले ही हम ओलंपिक में थोड़े से पिछड़े हैं, लेकिन पैरालंपिक हमारा बहुत शानदार परफॉर्मेंस देता है। और जो आईपीसी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ओलंपिक हमें कहाँ देना चाहिए, तो उस श्रेणी में हम आगे हैं। तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि हमारी 36 की जो ओलंपिक हमारी मेजबानी मिलेगी वो एक ऐतिहासिक ओलंपिक होगा हमारा।
1: पहले एक नारा चलता था कि अगर खेलोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और वर्तमान में सरकार ने इस नारे को पूरी तरीके से चरितार्थ है वो चेंज कर दिया है। आज अगर जो खिलाड़ी जो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र से हो, अगर वो अच्छे तरीके से खेल रहा है और बहुत अधिक मेहनत करके अगर करना चाहता है तो उस क्षेत्र में काफी कुछ कर सकता है, तो खेलों में किस प्रकार से युवा है वो अपने करियर बना सकता है?
0: देखिये, प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया स्कीम लॉन्च की थी, उसका टारगेट क्या था, जूनियर लेवल के वो बच्चे जिनको प्रतिभा तो है पर सुविधाएं नहीं उनके पास, वो किसान फैमिली से हैं, कई ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके लिए ये स्कीम आई खेलो इंडिया। ये जूनियर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में जब बच्चा जाता है खेलो इंडिया खेलने के बाद में जब सिलेक्शन होता है, उसको सालाना उसको 8 लाख रुपये की फैसिलिटी मिलती है। और आप यकीन नहीं करोगे, दुनिया के जो बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर हैं वैसी फैसिलिटी उनको यहाँ मिलती है। मुझे आज भी याद है जब हम पुराने टाइम में ट्रेन के लोकल केबिन में बैठ के जाते थे, आज 16 साल का बच्चा जब नेशनल खेलने जाता है तो भारत सरकार उनको फ्लाइट की टिकट देता है और वो ये कहता है ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। उसमें भी सालाना 8 लाख रुपए में आपको पर डे 500 रुपए की डाइट मिलती है, आपको एसी रूम मिलता है, आपको कोच मिलता है, आपको न्यूट्रिशन मिलता है, आपको फिटनेस ट्रेनर मिलता है और इवन आपको साइकोलॉजिस्ट भी मिलता है। एक बच्चे को इतनी फैसिलिटी मिलती है तो खिलाड़ी क्यों नहीं बनेगा। और उसको 10,000 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, सालाना 25,000 रुपए की उसको किट मिलती है। यानी जब बच्चा बैग उठा के घर से जाता है तो वो सरकार के गोद चला जाता है। ये स्कीम है खेलो इंडिया, उसको 10,000 रुपए पॉकेट मनी बहुत बड़ी बात है एक 16-17 साल के बच्चे को मिलती है। यानी माँ बाप ये सोचते हैं कि अब हमें देने की जरूरत नहीं है, बच्चे को सब फैसिलिटी भारत सरकार देती है और वो पूरी इम्प्लीमेंट है। जब इम्प्लीमेंट होती है कोई पॉलिसी तो उसका रिजल्ट आता है।
1: जी जी, जब हम बात करते हैं खेलों की तो खेलों में शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता का विकास भी बहुत जरूरी है, खासकर जब हम बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करने का। तो किस प्रकार से खिलाड़ी अपनी मानसिक क्षमता का विकास करता है, मानसिक रूप से मजबूत होता है?
0: देखिए, मैं कह सकता हूँ खिलाड़ी से ज्यादा मानसिक तौर पर फिट कोई नहीं हो सकता। खिलाड़ी एक ऐसा होता है जब वो कॉम्पिटिशन में खेलने जाता है और जब वो कॉम्पिटिशन हार जाता है अगले दिन फिर वो ग्राउंड में जाता है कि मैं अगले टूर्नामेंट में जीतूंगा। यदि कोई बिजनेसमैन फेल हो जाता है बिजनेस में तो अगले दिन अपने बिजनेस में नहीं जा पाता। इसलिए मैं कह सकता हूँ खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मानसिक तौर पर फिट होता है। लेकिन हमारी भारत सरकार ने मानसिक तौर पर फिट करने के लिए कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट अपॉइंटमेंट किए हैं कि कोई फिर भी प्रेशर में आए। कई बार क्या होता है बाई कंट्री बहुत हमारे पे प्रेशर होता है, बाई फैमिली बहुत प्रेशर होता है, दर्शकों का बहुत प्रेशर रहता है, तो उन सबको कम करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि सबसे बड़े इवेंट ओलंपिक जैसे खेलों में मैंने 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो अलग बात है। मैं प्रेशर नहीं मानता, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर खिलाड़ी प्रेशर नहीं मानता। हर कई खिलाड़ी प्रेशर मानते हैं। तो मानसिक तौर पर सबसे ज़्यादा खिलाड़ी फिट होता है।
1: जी, जब हम बात करते हैं 12 साल समृद्धि के, 12 साल विश्वास के और 12 साल सुरक्षा के, तो इन 12 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किया है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में किस प्रकार की उम्मीदें और बढ़ जाती है?
0: पिछली 12 साल को छोड़ दें तो भारत ने 60 सालों में 8 ही पैरालंपिक मेडल जीते और इन 12 सालों में कितने जीते, 52 मेडल जीते। तो ये दर्शाता है ये दिव्यांगों के प्रति जो सोच है भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, जब वो सपना देख रहे हैं 2047 विकसित भारत का, तो ऐसे ही सपना पूरे होंगे। इसलिए काम बोलता है, उन्होंने काम किया है, हर वर्ग को उन्होंने टच किया है। इसलिए कहते हैं सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास।
1: जी, सबका साथ सबका विकास और इसी ध्येय पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य भी कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: बस मैं युवाओं को इतना संदेश देना चाहता हूँ आपके रेडियो के माध्यम से कि जिंदगी में आप निराश ना हो और सबसे बड़ी आपकी कोई ताकत है तो वो ये है कि आप अपने आप पे विश्वास करें कि मैं कर सकता हूँ। आइए हम सब मिल करके इस देश को दुनिया की ऊंचाई पे लेकर के जाएं।
1: जी, आप स्टूडियो में आए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारे श्रोता साथियों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता भी सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय था खेलों में भारत के बढ़ते कदम। इस विषय पर पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया से अमित कुमार शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी।
3: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज़।

श्रोता हम बात कर लेते हैं जल संरक्षण की। मुद्दा है जल संरक्षण आज की आवश्यकता। दोस्तों, नो डाउट ये बात सही है कि जल संरक्षण आज की एक महती आवश्यकता है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे जल संरक्षण ना केवल आज की बल्कि बीते कल की भी आवश्यकता थी और आने वाले कल की भी एक महती आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जल प्रकृति का दिया एक ऐसा तोहफा है जो कल भी लिमिटेड था, आज भी लिमिटेड है और आने वाले कल के दिन भी लिमिटेड ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति में जितना जल है वही रहने वाला है। उसको हम किसी भी प्रयोगशाला में, किसी भी फैक्ट्री में या कोई सी विधि से बढ़ा नहीं सकते, इसलिए जितना जल है उसी को एक तरीके से समझदारी से यूज करना होगा। और सबसे बड़ी बात श्रोताओं, पानी की इस पूरी पृथ्वी पे कमी नहीं है, 3/4 हिस्सा पृथ्वी का पानी से भरा है, लेकिन वो पानी उपयोग के योग्य नहीं है। हम जिसे उपयोग के योग्य विशेष तौर पर बात करें पेयजल की, तो वो हिस्सा 1% से भी कम के आसपास है। इसलिए जल को हमें संरक्षित रखना है और संरक्षण के लिए जो भी कुछ विधियां हमारी परंपरागत हैं, वैज्ञानिक विधियां हैं, उन तरीकों को इस्तेमाल करना है। और ख़ास तौर पर बात अब हम इसलिए कर रहे हैं कि लगभग मानसून आ चुका है और आने को भी है। ऐसे में जब वर्षा रूपी अमृत जल बरसे तो उसे हमें सहेजने के लिए संरक्षित कर लेना चाहिए, ताकि पूरे साल भर हम उस पानी का उपयोग पेयजल के रूप में करते रहें।

श्रोताओं, उम्मीद करेंगे आज जिन मुद्दों पर हमारी और आपकी बातचीत हुई है, हम सभी उनको फॉलो करते रहेंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम नमस्कार चूरू यहीं संपन्न करने के अनुमति दीजिएगा अपने साथी मनीष भारद्वाज को।

एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जुरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले समाचार प्रभात। मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: सबका प्यारा
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
4: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
3: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफी नहार, आकाशवाणी कोलकाता।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026

0: 27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का

0: Pakistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हो चुके हैं। लीजिए पेशे खिदमत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: FM चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।

अनुराधा पोडवाल और चंदन दास के आवाजों के साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र जयपुर से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के लाभान्वित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए डिजी दुकान ऐप का शुभारंभ किया और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वे इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली के सुमेरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव में शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों के जरिए 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के लगभग 700 बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के साथ सीधा संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीएलओ के जमीनी अनुभवों, चुनौतियों और सुझावों को गहराई से समझना है। इस दौरान मतदाता सूची अपडेशन और निर्वाचन जागरूकता में उनकी भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान ने एसआईआर के दौरान 98% तक शानदार मैपिंग कर देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 178 राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी किए। इस सूची में कई जिलों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इन तबादलों में सभी अधिकारियों को बिना कार्य ग्रहण काल का उपयोग किए तुरंत प्रभाव से अपने नए पदों का कार्यभार संभालने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कल आयोजित होने वाली री नीट परीक्षा को देखते हुए 7 परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय किया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने आकाशवाणी को बताया कि विद्यार्थियों की सुगम आवाजाही के लिए रेवाड़ी बठिंडा, बाड़मेर भगत की कोठी, रेवाड़ी जयपुर जोधपुर सांगानेर और बीकानेर डहर के बालाजी जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में चलेंगी। इसके अलावा भगत की कोठी से जयपुर और मदार से रेवाड़ी के लिए एक तरफा परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी रेलगाड़ियों का विभिन्न छोटे बड़े स्टेशनों पर ठहराव किया जाएगा।
1: 21 तारीख को होने वाली नीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एनडब्ल्यूआर ने व्यापक तैयारियां की हैं। इसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्टूडेंट के मूवमेंट और राजस्थान के एग्जामिनेशन सेंटर्स को ध्यान में रखते हुए उसी डायरेक्शंस में ये ट्रेनें प्लान की गई हैं। इसके अलावा स्टेशन पे अदर तैयारियां भी की गई हैं। स्टेशन पे लोगों को डेपुट किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को अपने सेंटर पे पहुंचने के लिए वो गाइड कर सकें और स्टूडेंट आराम से अपने सेंटर पे पहुंच सकें।
0: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की

0: खरीद और उनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में हुई राज उन्नति की बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, चिकित्सा और सड़क जैसी जन सुविधाओं से जुड़े किसी भी काम में प्रशासनिक शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आगामी मॉनसून के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को नालों की सफाई, सड़कों के पैचवर्क और मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के व्यापारियों को एक बड़े डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए ONDC डिजी दुकान ऐप शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित जयपुर व्यापार महासंघ के कार्यक्रम में इस ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये नई डिजी ऐप दुकान पहल छोटे दुकानदारों, किराना व्यापारियों और उद्यमियों को डिजिटल वाणिज्य से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारी विभिन्न ब्रांड्स, वितरकों और थोक विक्रेताओं से जुड़कर अपनी खरीद और आपूर्ति प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बना सकेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सदियों से व्यापार और उद्यम की भूमि रहा है। आज देश दुनिया के हर कोने में राजस्थान के व्यापारी अपनी पहचान बना रहे हैं
1: और इस बात की मुझे खुशी होती है कि देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी राजधानी, किसी भी बड़े शहर में जाता हूं, दुनिया के किसी देश में जाता हूं, तो वहां मेरे प्रवासी राजस्थान भाइयों को देखता हूं, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू वो व्यापारी पूरी देश और दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के मस्तिष्क को गर्व से ऊंचा कर देते हैं जो वहां जाकर के हम सुनते हैं कि इस शहर में या इस देश में सबसे बड़े व्यापारियों में नाम राजस्थान के 4, 6, 10 होते हैं, ये गर्व से ऊंचा हो जाता है।
0: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौर को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए। श्री राठौड़ को ये दायित्व वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू की सेवानिवृत्ति के बाद दिया गया है। नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक वे इस पद का कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आयोग में 2 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की है। इनमें भीलवाड़ा के MLV कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संतोष आनंद और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा के प्रदेश संगठन मंत्री डॉ दीपक कुमार शर्मा शामिल। इन दोनों नए सदस्यों का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक निर्धारित किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल प्रदेश भर में मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और उप ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। आयोजन की इसी कड़ी में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से जयपुर स्थित जंतर मंतर पर कार्यक्रम होगा। इसमें 18 देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे। संस्थान के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि संस्थान द्वारा योगा डे 100 दिवसीय काउंटडाउन के तहत देश भर में 30 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से सेना, पुलिस और विभिन्न संस्थानों में योग और तनाव प्रबंधन का प्रचार प्रसार किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9,44,00,000 किसान लाभान्वित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के BLO और सुपरवाइजरों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए डिजी दुकान ऐप का

0: शुभारंभ किया और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कैसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 110.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 9:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

0: श्रोता अभी सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम साहित्य सुगंध। आज आप सुनेंगे कविता पाठ। कवि हैं मयंक त्रिवेदी।
1: नमस्कार, मेरा नाम मयंक त्रिवेदी। मैं अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करना चाहता हूं। आंखों का नशा रातों की दवा, सुबह तक सब उतर जाएगा। आंखों का नशा रातों की दवा, सुबह तक सब उतर जाएगा। समंदर में से आंखें निकालो, आंखों में से मछलियां निकालो। सच कहने की ताकत है तो खुद के भीतर से खुद को निकालो। समंदर में से आंखें निकालो, आंखों में से मछलियां निकालो। सच कहने की ताकत है तो खुद के भीतर से खुद को निकालो। मिट्टी के कणों पर, हवा के बदन पर, पेड़ों की टहनियां, रातों की चादर, लहरों की सलवटें, हवा के बदन की सारी निशानियां, सुबह की किरणें सब बता देती है। सुबह की किरणें सब बता देती है। आंखों का नशा रातों की दुआ, सुबह तक सब उतर जाएगा। सब एक दिन आंखें मर जाएगी, जब एक दिन आंखें मर जाएगी, कौवे की चोंच आंखों से भर जाएगी। जब तुम कुछ ना कह भी सकोगे, आंखों की बातें आंखों में रह जाएगी। सच का समंदर सारा सूख कर मर जाएगा। सच का समंदर सारा सूख कर मर जाएगा। आंखों का नशा रातों की दवा, सुबह तक सब उतर जाएगा। अगली कविता। कैसा जहान है, जल से जलता जा रहा है। पानी के लिए आंखों में पानी भरता जा रहा है। राजा को क्या मतलब, जब तक रानी के पास शरबत जा रहा है। राजा को क्या मतलब, जब तक रानी के पास शरबत जा रहा है। राजा नहीं आएगा, जब तक जहान जल से जल नहीं जाएगा। राजा अब आएगा, जली हुई धरती से राख उठाएगा। अब उम्मीद के बोल निकलेंगे, इन सब की याद में एक कुंड बनाएंगे, ताकि अगली बार बारिश बिखरे हुए ना मिले। ताकि अगली बार शरीर बिखरे हुए ना मिले, सारे एक जगह पर ही मिल जाएं। अगली कविता। मैं आज भारतीय सभ्यता में रहते हुए किसी और से कैसे कह दूं कि हम सिंधु सभ्यता वाले हैं। माना कि समय अलग है, परंतु समय के रथ पर तो विकास के ध्वज है। तब फिर ये स्थिति कैसे, क्या हम सिंधु सभ्यता वाले हैं, या फिर सिंधु सभ्यता के विध्वंस होने वाली स्थिति में हम आज हैं। खैर, हम आज न वैदिक सभ्यता में हैं, न सिंधु सभ्यता में हैं, या फिर भ्रष्ट सभ्यता में है। अगली कविता। आज अंधेरे में गर्मी की सुगंध की, आज अंधेरे में गर्मी की सुगंध की पहली मुट्ठी खुली। सुगंध ठीक ठीक वैसी ही थी, जैसे आग में जलते हुए इंसान की आंख फूटती थी। और निकली भरी आंख में खोखली दुनिया। तिल मिलाते हुए शरीर के वो सारे अंग कह रहे थे सच, और दुनिया झूठी। जो समझ रही

थी कि इंसान को आग जला रही थी, नहीं, इंसान ही आग को जला रहा था। सब इंतजार कर रहे थे अब आग बुझेगी और हम हवा देकर निकलेंगे, जैसे तपती भूमि से निकलते हैं सड़े कीड़े, जैसे तपती भूमि से निकलते हैं सड़े कीड़े जो बाहर आकर मुंह खोलते हैं, और निकलती है पहली गर्मी की सुगंध जो आए हैं बाहर अंधेरे से आज। अगली कविता। हमें मालूम नहीं रात हो गई, हमें मालूम ही नहीं रात हो गई, आंखें खुली जब तक बात हो गई। हमें मालूम ही नहीं रात हो गई, आंखें खुली जब तक बात हो गई। हमें हवा के चलने का इंतजार था, हमें हवा के चलने का इंतजार था, उससे पहले ही एक वारदात हो गई। उनसे मिलने का दस्तूर ही नहीं हुआ, उनसे मिलने का दस्तूर ही नहीं हुआ, ये इच्छा भी मेरी कसूर हो गई। वजह बताते तो इतना बुरा नहीं लगता, तुम्हें अब इस खेल की बड़ी आदत हो गई। अगली कविता। क्या तुम भी वही पंछी हो जो दिन भर भोजन एकत्रित करने के लिए घूमते हो? क्या तुम भी वही पंछी हो जो दिन भर भोजन एकत्रित करने के लिए घूमते हो, परंतु जब सायंकाल को घर जाने का समय होता है तब अपने घर का रास्ता भूल जाते हो? क्या तुम भी वही पंछी हो जो कृत्रिम बुद्धिमता की भीड़ में अपने घर में से किसी एक सदस्य की आवाज का इंतजार करते हो, किसी कोने में बैठ के कि किसी इस भीड़ में से मुझे अपने घर का रास्ता याद आ जाए? क्या तुम वही पंछी हो? स्वतंत्र। अगली कविता। ये धंवर पी जाए मुझे, ये धंवर पी जाए मुझे, बादलों में ले जाए मुझे, फिर उतरूंगा क्षितिज पर, फिर उतरूंगा क्षितिज पर और एकांत पहाड़ियों की छत पर। ना मैं किसी को देखूंगा, ना मैं किसी को दिखूंगा, ना मैं किसी को देखूंगा, ना मैं किसी को दिखूंगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। अगली कविता। बातें उसने अपनी सारी कहकर कहा, बातें उसने अपनी सारी कहकर कहा, तुम किसी से भी ना कहना, मैं थमा सहमा हुआ, हवाओं की सुई से उसकी बातें सारी सजाने लगा, और अब बना दी दूध के बूंदों की माला, और अब पहना दी चूहों को, मैंने कहा कि सांपों को मत कहना, मैंने कहा सांपों को मत कहना। मेरी अगली कविता। मैं नाम तेरा तू जीवन मेरा, मैं जब भी देखूं द्वार तेरा, मैं पाऊं तुझे दिलदार मेरा, मैं जब भी देखूं द्वार तेरा, मैं पाऊं तुझे दिलदार मेरा, मेरे मन के आंगन में रूप तेरा, तेरे हर रूप रूप में भाव मेरा, तेरे हर रूप रूप में भाव मेरा, मैं सिमरूं हर पल नाम तेरा, मैं सिमरूं हर पल नाम तेरा, मैंने चाहा कुछ भी नहीं, मैंने चाहा कुछ भी नहीं, अपनी हर आह में पाया नाम तेरा, मैं धरती हूँ तू अंबर मेरा, मैं धरती हूँ तू अंबर मेरा, मैं जितना भी फैला तेरे अंदर तेरा, मैं सिमरूं हर पल नाम तेरा, मैं सिमरूं हर पल नाम तेरा, मैं रेत बनूं तू पानी बने,

0: मैं रेत बनूं तू पानी बने, मैं पानी बनूं तू हवा बने, मैं हवा बनूं तू गगन बने, मैं नाम तेरा तू जीवन मेरा, मैं नाम तेरा तू जीवन मेरा, मैं सिमरूं हर पल नाम तेरा, मैं सिमरूं हर पल नाम तेरा। धन्यवाद।
1: श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य सुगंध में कविता पाठ। कवि थे मयंक त्रिवेदी। सुनते रहिए आकाशवाणी चूरू के कार्यक्रम।
2: फूड वेस्टेज पॉलिथीन में बांध कर न फेंके, यह निरीह पशुओं के लिए जानलेवा है।

वृक्षारोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, वृक्षों का पोषण और संरक्षण भी आवश्यक है। वृक्षारोपण एवं पोषण पर्यावरण संतुलन का सबसे बड़ा उपाय है। आओ वृक्ष लगाएं।

अशुद्ध जल को उबालने से उसको प्रदूषित करने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अपने ऑटोमोबाइल वाहन का हॉर्न अनावश्यक ही न बजाएं, इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है।

0: शोर से शारीरिक तनाव में वृद्धि होती है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम में योगदान करें।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
2: पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: अन्नदाता का बढ़ता
0: दूषित जल का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर तुरंत पड़ता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिश आदि रोग प्रदूषित जल से होते हैं। जल प्रदूषण को रोकें।

कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक रसायन बहुत जहरीले होते हैं। इनका रखरखाव और उपयोग सावधानी पूर्वक करें। प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण का दुश्मन है। हम पॉलीथीन कचरे का कारक न बने, पॉलीथीन थैलियों का उपयोग बंद करें।

उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशा तक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा है हिंदी। गांधी जी ने कहा था, भारतवर्ष में 7 लाख देहात हैं, सारा कार्य देहातों पर निर्भर है, इसलिए जिसे वे लोग समझ सकें ऐसी भाषा का प्रयोग करने की आवश्यकता है, ऐसी भाषा हिंदी है।

इवेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को नमस्कार, मनीष भारद्वाज का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप भी हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कमेंट भेजकर अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज जो बात हम तक हमारे जिन श्रोताओं ने पहुंचाई है, चलिए आपसे शेयर करते हैं। श्रोता हैं हमारे ग्राम कोलासर, तालुका नंदूरा, महाराष्ट्र से प्रमोद बागड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े और संकेत बगाड़े। आप लिखते हैं, ये जिंदगी बस कुछ पल दो पल के लिए है, यहां जो आज अपना है वो कल बिखरा हुआ है, जो आसमान छूने निकले वो भी मिट्टी में खाक हुई, समय के साथ सब जलकर यहां राख हुए, कोई मौत की परछाई से बच पाता नहीं, बीते हुए वक्त कभी वापस लौट के आते नहीं, बस यही जीवन का अंतिम सवेरा है, इस दुनिया में यही अंतिम बसेरा है, इसलिए जिंदगी में एक दोस्त ऐसा जरूर बनाना जो ना तुम्हारे धन का हो, न रिश्तेदार, न बचपन का, बस दुनिया के किसी कोने में हो जिससे तुम बिना डर अपने दिल की हर बात कह सको, क्योंकि कभी कभी पास वाले ही सबसे ज्यादा दुख दे देते हैं और दूर वाले सिर्फ समझते हैं। ऐसे दोस्त कम मिलते हैं, जिनसे मुलाकातें कम होती है पर सुकून भरी बातें ज्यादा होती है। जी हाँ, इत्तेफाक है आपकी बात से, जीवन में ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए। और आज हमने सवेरे भी आपसे बात की थी कि मित्रता जीवन को आगे ले जाती है, इसलिए आप हम सभी जीवन में एक दोस्त ऐसा जरूर रखें जिससे अपने तमाम दिल की बातें शेयर करते रहें और अपने जीवन को सतरंगी जीवन के रूप में जीते रहें।

मिट्टी के एक छोटे से दिए ने भी हवाओं को औकात दिखाई है। अंधेरे चाहे जितने घने हों, उसने अपनी लो हर हाल में जलाई है। तू तूफानों के रुख से डरकर अपनी हिम्मत मत हार ए राही। रोशनी वही फैलाता है जिसने हवाओं के थपेड़ों से टक्कर खाई है। जी हाँ श्रोताओं, ये विचार हैं ध्रुवित पारिक और अक्षित पारिक के चूरू से, और सही रामनगर पीथी सर चूरू से लिखते हैं हरि सिंह नायक, दुर्गा राम बुडानिया, चिक्की पूजा रवि और लक्षिता नायक। आप सभी की ये बातें हमें आगे बढ़ने की और हौसला अफजाई की प्रेरणा देती है। सुनते रहिए कार्यक्रम आकाशवाणी चूरू की।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

नदियों को साफ मत कीजिए, बस गंदा करना बंद कर दीजिए। साफ तो वो खुद अपने आप को कर लेंगी। जंगल मत उगाइए, बस पेड़ काटना बंद कर दीजिए, जंगल खुद अपने आप उगाएगा। शांति स्थापित मत कीजिए, अशांति फैलाना बंद कर दीजिए, शांति खुद ब खुद हो जाएगी। व्यवस्था मत बनाइए, व्यवस्थित रहिए, व्यवस्था खुद हो जाएगी। ये विचार हैं हमारे श्रोता नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा के। आपने दो दो पंक्तियों में जो कुछ हमें करना चाहिए और उस करने को किस प्रकार से हम ना करें वो हमें दो लाइन के माध्यम से समझाया है। और ये बताया है कि हमें जिस प्रकार हम कहते हैं डूज और डोंट्स, हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम इन इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो जो चीज़ें हैं वो अपने आप स्वतः हो जाएंगी, क्योंकि प्रकृति सारी चीज़ों की व्यवस्था खुद रखती है, हम केवल उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो मिड्ढा जी, आपने कहा कि हम किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ को डिस्टर्ब करना अगर छोड़ देंगे तो वो चीज़ स्वतः ही सही स्थिति में अपने आप हो जाएगी। इसी के साथ आपकी बातों में एक बात हम भी जोड़ देते हैं कि जिस प्रकार प्रदूषण है, पर्यावरण को प्रदूषित हम करते हैं, अगर प्रदूषण करना हम छोड़ देंगे तो वातावरण अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा। प्रकृति का वातावरण पहले से ही स्वच्छ है, हम उसको बीच में प्रदूषित करके खराब करते हैं, इसलिए हमें बार बार प्रदूषण पर जिक्र करना पड़ता है।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
5: रास्ता धुंधला हो सकता है मगर बंद नहीं, परिस्थितियां बुरी हो सकती हैं मगर जिंदगी नहीं। ये विचार लिखे हैं वारिस अली खान ने, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। बिल्कुल खान साहब, कोई भी रास्ता बंद नहीं होता। हाँ, रास्ते लंबे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, कच्चे भी होते हैं, पक्के भी होते हैं, उलझाने वाले भी होते हैं, सरपट भी, सीधे भी होते हैं। कई लंबे होते हैं, कई शॉर्टकट होते हैं, लेकिन आपने सही लिखा कि कोई भी रास्ता बंद नहीं होता। हाँ, उन रास्तों पर चलने की जो एक कीमिया है, उनकी चाबी है, उनका तरीका है, उनका ब्लूप्रिंट है, वो हमें पता होना चाहिए। इसलिए आपका संदेश बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं कि जिंदगी में आगे चलते रहिए, कहीं न कहीं से रास्ता जरूर निकल आएगा।

पलारी छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं हमें नितेश कुमार देवांगन और इनके साथी। ऊपरकोटा मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से लिख रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार। आप लिखते हैं जिन लोगों को हर चीज़ में बुराई ढूंढने की आदत होती है वो आपकी बुराई ही करेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें। इसलिए आप शांत भाव से अपने कर्म करते रहिए, निंदा से मत घबराइए, क्योंकि निंदा उन्हीं की होती है जो जिंदा होते हैं, बाकी मरने के बाद तो सभी की तारीफ ही होती है। सही लिखा आपने कि जो भी कुछ हमें करना है, जिसे हम अच्छा पॉजिटिव समझ रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया सामने से नेगेटिव है, तो भी हमें अपने कर्म में रत रहना चाहिए। और आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात वही व्यक्ति आपके सही कामों को सही मानेंगे।

श्रोताओं, इस वक्त आप FM चूरू से सुन रहे हैं फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक।

श्रोताओं, आप भी अपने कमेंट्स हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे ऑफिशियल आकाशवाणी चूरू के फेसबुक पेज पर अपने कमेंट्स लिखकर। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। अब कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिएगा अपने साथी मनीष भारद्वाज को।

FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता भी सुन रहे थे फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। सुबह के 10 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र मुंबई से रिले विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: करे तो
1: काफी होता है,
0: काफी होता है।
2: मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
5: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता।

अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख

माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध सी बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं? लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मन स्थिति में उनका हाथ थामे बैठी, बस सांत्वना देती, पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहां जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं।

0: कभी तो हंसाए,
1: कभी ये रुलाए। उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती

उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाहती हूं, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहां, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही, और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूं।

अनुभा ने रोती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली दिवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा जो पास के कमरे से सब देख रही थी वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर, परिवार, समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन मिल गया तुमको? अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर, हर सुख दुख में उसका साथ देने पर, उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए। अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला। क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़प कर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मिले धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर न करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई न कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा को फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तलखी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूँ, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो, तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो, वो भी अपने ही पापा को? कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसके प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभा चीखी तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुंचता ही होगा। अनुभा की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और तोड़वाना भी।

कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: यह है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
2: श्रोताओं, दिन की 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद 11:05 से आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। दिन में 12:00 गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम होगा सुरबहार। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा माडी के स्वर। आज के कलाकार हैं पीरू खां। दिन में 1:05 पर महिला श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज चर्चा होगी अपनी बेटी में हो रहे बदलावों पर ध्यान दें, फैशन ट्रेंड्स, जरूरत या दिखावा, इस विषय पर भी बातचीत होगी। साथ ही रखे पहनावे में शालीनता का ध्यान।

आज दिन में 2:30 बजे से हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। दिन में 3 बजे हम आपके फोन कॉल्स भी रिकॉर्ड करेंगे। आज महीने का तीसरा शनिवार है। कार्यक्रम हेलो चूरू के लिए आपके फोन कॉल्स रिकॉर्ड होंगे दिन में 3 बजे से। हमारे फोन नंबर हैं 01562253644। श्रोताओं, हमारे सायंकालीन सभा प्रारंभ होगी शाम 3:55 पर। आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने के समारोह का प्रसारण।

युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी शाम 5 बजे। आज युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवा पसंद, चर्चा होगी विश्व शरणार्थी दिवस पर। साथ ही पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम में आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता पर भी बातचीत होगी।

शाम 7 बजे किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा किसान वाणी। चर्चा होगी परंपरागत कृषि विकास योजना और पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त। एक और चर्चा होगी खरीफ हेतु उचित बीज का चयन करें। शाम 7:30 पर राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम होगा। 9:15 पर भी आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 8:00 हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। चित्र भारती कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होगा 9:30 पर और 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। डीजे प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

श्रोता अभी सुन रहे थे किशोर कुमार मोहम्मद रफी की आवाज में यादों की बारात, फिल्म का ये गीत। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का अगला गीत।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,

0: राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

क्रिमिनल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में। श्रोता इस समय सुन रही हैं आकाशवाणी के चोरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत कुंज बिहारी के साथ।

लता मंगेशकर और बाबला की आवाज में श्रोता सुन रही थी चांदनी फिल्म का गाना। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम चित्रपट संगीत श्रोता इस समय सुन रही हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश। आपके ब्रांड की

0: की सही पहचान।
1: तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

बोल राधा बोल। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की आवाज़ में। श्रोता इस समय सुन रही हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

नितिन मुकेश अनुराधा पौडवाल की आवाज में श्रोता सुन रहे थे भाभी फिल्म का गाना। जब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। आशा भोसले के साथ नितिन मुकेश की आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म

सनम फिल्म का ये गीत आप सुन रही थी पंकज उधास की आवाज में। समय अभाव के कारण इस गीत को हम पूरा नहीं सुनवा पाए, इसके लिए हमें खेद है। आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। निजी प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम सुरबहार।

लक्की अली की आवाज़ में ही श्रोता सुन रहे थे गैर फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुरबहार कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर।

0: पीरू खां और उनके साथियों को आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के स्वर में। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन का 1 बजने वाला है। अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पाली के सुमेरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर के जनपथ से 29 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आधुनिक ई बसों के संचालन से राजधानी में प्रदूषण घटेगा और शहरवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इसे विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए 1100 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे राज्य में स्वच्छ और सुगम परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी।
2: हमारी सार्वजनिक परिवहन से शहरी क्षेत्रों में होने वाली प्रदूषण कम होगा और हमारा निश्चित रूप से पर्यावरण की क्षेत्र में एक नया कदम होगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर का चयन इसमें हुआ है। 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई है, जिनका आना प्रारंभ हो गया है। 475 ई बसें स्वीकृत और हुई है, जो इस कुल मिलाकर के 1150 बस की सौगात मिलने जा रही है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के लगभग 700 बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सीतापुरा स्थित JECC में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य BLO के

0: जमीनी अनुभवों चुनौतियों और सुझावों को गहराई से समझना है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल प्रदेश भर में मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबू राज में आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर में और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। इस बीच प्रदेश में जगह जगह सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने अपने जयपुर स्थित आवास पर योगाभ्यास कर प्रदेशवासियों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस दौरान महिला पुलिस और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के कार्मिकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है बल्कि ये स्वस्थ शरीर शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। जोधपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा नई पीढ़ी के ऐसे विशेष बायोमार्कर्स विकसित किए जा रहे हैं जिनकी मदद से उपचार शुरू होने से पहले ही ये सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा कि किसी मरीज की कीमोथेरेपी पर कितना असर होगा। और अधिक ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से।
1: शोध में सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, मल्टीकलर हाई पैरामीटर फ्लो साइटोमेट्री और आधुनिक आणविक तकनीकों का उपयोग कर कैंसर कोशिकाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये शोध भविष्य में कैंसर उपचार को अधिक व्यक्तिगत, सटीक और प्रभावी बनाने के साथ ही मरीजों की जीवित रहने की संभावना भी बढ़ाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये चुरू केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाले सभी श्रोता बहनों का स्वागत है उनके अपने प्रोग्राम महिला जगत में। और आज मैं हूँ आपकी साथ माया, और मेरे साथ हैं
1: मैं विनीता शर्मा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी माया। हम बात करेंगे बहनों से, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन क्या होता है कई बार हम ऐसे देखते हैं माया की जो हमारी रूटीन लाइफ होती है सुबह से लेकर शाम तक एक ही जैसे काम करते करते हमें कई बार ऐसे लगता है कि कुछ तो नयापन हो। बाहर जा नहीं सकते क्योंकि तेज धूप होती है, तो कभी कभी मन करता है कि कुछ दोस्त हो, कुछ मिलने के लिए आ जाए हमसे, कुछ अलग हो जाए, कि घर पे ही कोई आ जाए हमसे मिलने और हम कुछ अलग सा महसूस करें उनके साथ। अगर बचपन की दोस्त है तो बचपन की बातें याद करके भी हम खुश हो सकते हैं, या फिर आपकी जवानी में या किसी भी उम्र में आपकी दोस्त बनी है, कुछ ऐसे भी मेहमान होते हैं जिनके आनक से रौनक हो जाती है,
0: जिनकी घर की रौनक है वो और चार चांद लग जाते हैं उसके।
1: बिल्कुल, खबर मिलते ही मन जो है ना वो प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है कि हाँ आज वो आएंगे, और हम बहुत सारी तैयारियां भी करने लग जाते हैं।
0: एक बार जो जिनको याद करें खासकर वही आ जाए तो और ही अच्छा हो जाता है।

0: पता,
1: अरे
0: मन बहुत
1: वाह,
0: ज्यादा खुशी हो जाती है मन को।
1: बिल्कुल माया, बहुत सही कहा है कि जिनको हम याद करते हैं वो ही आ जाते हैं, तो ये मानिए कि वो पूरा दिन बन जाता है और हमें खुशी भी मिलती है। तो कई बार, और हो सकता है देखिए, हमारे जाने से भी कई लोग जो हैं खुश होते हैं, वो हमें बुलाते रहते हैं इतने प्यार से कि आइए समय निकाल के। तो
0: बिल्कुल
1: जब हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई मिलने के लिए आए, तो हमें भी वो बहाना बनाना चाहिए कुछ की, कभी यूं ही निकल जाना चाहिए और अपने दोस्तों से या जो अपने चाहने वाले होते हैं
0: बिल्कुल
1: उनसे जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो मिलने से पहले की जो खबर होती है ना, वो
0: बिल्कुल
1: भी बहुत खुशी देती है।

0: बिल्कुल बहनों, प्यारे से गीत के बाद बात करते हैं अपनी बेटियों की। बेटियां क्या है विंता जी, परिवार की खुशियों का आधार होती है और जन्म से लेकर बड़े होने तक माता पिता उनके हर कदम पर नजर रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे बेटियां बचपन से किशोर अवस्था की ओर बढ़ती है, उनके शरीर, मन, व्यवहार और भावनाओं में कई ऐसे बदलाव आते हैं, तो ये बदलाव प्राकृतिक होते हैं। लेकिन यदि माता पिता इन परिवर्तनों को समझने पर उन पर ध्यान देने में असफल रहते हैं, तो बच्चों को अनेक शारीरिक, जो मानसिक है, सामाजिक है, समस्याओं का सामना है वो करना पड़ सकता है। तो एक माँ होने के नाते हमें आज के जो दौर चल रहा, जो सोशल मीडिया का है या बदलती जीवन शैली का प्रभाव है या बच्चों में तेजी से पढ़ रहे हैं, तो इनका हमें माँ होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बेटी में हो रहे बदलावों को समझें, उसके साथ जो मित्रवत व्यवहार है वो करें, उसके दोस्त बनकर रहें ताकि वो हर एक बात अपने साथ शेयर करें और अपने बताएं, ताकि हम बेटी की हर अच्छी बुरी हर बात, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी जिज्ञासाओं को हम जान सकें और हम उनकी सहायता कर सकें।
1: बिल्कुल माया, एक बेटी का सही मार्गदर्शन जो है वो एक माँ बहुत अच्छे से कर सकती है। और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बदलाव आते रहेंगे, वो शारीरिक भी होंगे, मानसिक भी होंगे और भावनात्मक भी होंगे। और ये विकास स्वस्थ तरीके से हो तो इसमें हम कहें कि एक माँ की महती भूमिका बन जाती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि 10 से 19 वर्ष की जो आयु है वो इसी बीच शुरू होती है और इसी समय हम देखते हैं
0: किशोरावस्था,
1: बिल्कुल, बेटी के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होने लगते हैं, उसकी लंबाई जो है वो भी बढ़ती है, उसका वजन जो है वो भी बढ़ता है और शरीर का जो आकार है वो पहले की तुलना में अलग सा दिखाई देने लगता है। ऐसे में बच्ची जो है कई जो उनको जिनको पता नहीं होता है वो सवाल जो है वो ये अपनी माँ से ही पूछती है और उस समय उन्हें सही जानकारी जो है वो देना एक माँ की जिम्मेदारी होती है। मासिक धर्म की हम बात करें, पीरियड्स की अगर बात करें, तो इसी दौरान जो है वो शुरुआत होती है और ये हमारी बच्चियों के लिए हम कहें कि किशोर अवस्था की जो होती है उसका हम कहें महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस समय माँ को चाहिए कि इन विषयों पर वो खुल के बात करे और सरल भाषा में बात करे, अपनी बेटी से बातचीत करें, किसी भी तरीके का जो हम कहें कि शर्म है या कोई डर है या भ्रम जो है वो ना हो, क्योंकि अगर माँ नहीं बताएगी तो अपनी दोस्त से पूछेगी जो उसकी हम उम्र होगी, तो सही जानकारी के अभाव में उसे
0: आधी अधूरी जानकारी मिलेगी।
1: बिल्कुल, शारीरिक कोई बीमारी जो है वो भी हो सकती है, वो मानसिक रूप से भी टूट सकती है। तो ऐसे में एक माँ का फर्ज बनता है कि वो शुरू से ही ऐसा माहौल रखे बच्चियों के साथ कि बच्चियां खुल के किसी भी बात पे बातचीत कर सके। शारीरिक बदलाव के साथ साथ माया मानसिक और भावनात्मक जो परिवर्तन है वो भी बच्चियों में देखने को मिलते हैं। बेटियां जो होती है वो कभी कभी बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है और कभी छोटी छोटी बातों में बेहद उदास।

0: नाराज हो जाती है या गुस्से में आ जाती है।
1: बिल्कुल
0: और ये व्यवहार जो है ये अक्सर होते तो हार्मोनल बदलाव के कारण होते हैं या नई परिस्थितियों के कारण भी हो जाते हैं। ऐसे में जब वो गुस्सा करती है तो माँ जो है कई बार उसे डांट देती है, तो ना तो डांटे, उसकी भावनाओं को समझे,
1: समझे
0: नजरअंदाज ना करे, और धैर्य पूर्वक उसकी जब बात सुनेंगे तो ये होगा कि अगर वो गलत ट्रैक पे भी होगी ना तो वो
1: बिल्कुल
0: अपनी माँ के सामने खुल के बात करेगी और माँ उसे सही तरीका बताएगी कि उसके लिए क्या गलत है क्या सही है। जब बेटी को ये महसूस होता है कि उसके माता पिता उसके साथ है, उसे समझा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं माया कि ऐसे समय में एक बच्ची का आत्मविश्वास जो है ना वो बढ़ने लगता
1: बढ़ने
0: है।
1: लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और विनीता जी, जो संवाद है वो भी बना के जरूर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि माता
0: बिल्कुल
1: पिता को अपनी व्यवस्था के कारण बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि बेटी अपनी समस्याएं दोस्तों या इंटरनेट से साझा करने लगती है। तो बेटी के साथ प्रतिदिन कुछ समय है वो जरूर निकालें, क्योंकि आज जैसे आज स्कूल में क्या हुआ, किस बात से उसे खुश किया गया या किस बात से वह परेशान तो नहीं है, या उसकी पसंद या उसकी रुचियों के बारे में जानें। जब बच्ची को लगेगा कि उसके माता पिता उसकी बात सुनते हैं, तब वह हर समस्या खुलकर बताएगी। और जो अपनी दोस्तों के साथ नहीं शेयर कर पाए, वो एक माँ को अपनी दोस्त मानेगी, और अपनी सारी बातें हैं पूरे दिन की, जो शेड्यूल है स्कूल का या घर का बाहर का या उसके जो मन के अंदर चल रहा है, वो सब बातें अपनी माँ के साथ शेयर करेगी। क्योंकि समय रहते अगर हम मासिक धर्म की जानकारी नहीं देंगे तो अनेक बीमारियां, जैसे विंता जी ने बताया कि कई बीमारियों से वो ग्रसित हो जाएगी, और स्वच्छता का है वो ध्यान नहीं रख पाएगी। तो हमें हर चीज़ का, उसको खान पान का भी ध्यान रखना है उस समय, कि बेटी को पोषण का पूरा ध्यान देना है, क्योंकि एक माँ के अलावा उसका कोई ध्यान नहीं रख सकता, क्योंकि मासिक धर्म के अंदर उसको खान पान का उसको पता नहीं होता, बच्ची को क्या कैसे खाना है क्या करना है। इस अवस्था में एक माँ है वो अच्छे से ध्यान रख पाती है, क्योंकि भोजन के अंदर जैसे दूध है, दूध के उत्पाद है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, मौसमी फल है, दालें हैं, सूखे मेवे हैं, ये प्रोटीन युक्त या अत्यधिक मीठे पेय पदार्थ है, इनसे बचना चाहिए, और प्रोटीन युक्त भोजन है उसको खिलाएं, ताकि वो इस समय जो समस्या से जूझ रही है, ताकि अनेक बीमारियों से ना जूझे।
0: बिल्कुल माया, एक और जो हम चर्चा करें टॉपिक पे जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज का जो युग है सोशल मीडिया का है, डिजिटल युग है, और ऐसे में हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो इंटरनेट से खासा प्रभावित हो रहे हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो होता है वो अपनी पहचान बनाना चाहता है, दूसरों
1: बिल्कुल
0: की स्वीकृति पाने की कोशिश करता है, फेमस होना चाहता है। ऐसे में वो ऑनलाइन की दुनिया से प्रभावित हो जाते हैं और कैसे भी कंटेंट जो है वो डालते रहते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए। तो ऐसे में उन्हें सही गलत का सिखाने के लिए माता-पिता जो है
1: उनकी
0: वो
1: जिम्मेदारी
0: बढ़ जाती है उनकी जिम्मेदारी, और उसमें वो कर सकते हैं कि बच्चों की जो ऑनलाइन गतिविधियां हैं उन पे
1: उन पर
0: ध्यान
1: नजर
0: दें
1: रखें।
0: और संतुलित ध्यान दें। इसका अर्थ ये है कि निगरानी ना करें, क्योंकि इससे बच्चा जो है जो भी काम कर रहा है छुप के करेगा, बल्कि हम उसे समय समय पे सुरक्षित तो जो इंटरनेट उपयोग है वो बताएं, साइबर सुरक्षा क्या है वो बताएं, ऑनलाइन जो ऑनलाइन के भी शिष्टाचार होते हैं उन सब के बारे में भी जागरूक करना जो है वो हमारा फर्ज बनता है। इस अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे जो है उन्हें पता लग जाएगा और सोशल मीडिया पे वो बहुत एक हम कहें कि एक हद में रह के ही कुछ भी, उनका अगर कुछ सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट में डालना है तो हद पार नहीं होगी और वो अपने आप को भी बचा सकते हैं और फ्रॉड का शिकार जो है वो नहीं होंगे। साथ ही साथ माया, पढ़ाई और मित्रों के प्रति उसका रवैया जो है वो बदल जाता है। जब बच्ची की हम बात कर रहे हैं, वो इस समय ये उम्र ऐसी होती है कि माता पिता के साथ बच्ची जो है उम्र कम समय जो है वो कम बिताना चाहती है,
1: बिल्कुल
0: वो चाहती है ज्यादा से ज्यादा समय जो
1: वो
0: है।
1: आजादी चाहती है, खुद सारा काम मैं खुद करूँ, वो स्वतंत्र होना चाहती है कि ये काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वो क्या गलत है क्या सही है।
0: बिल्कुल वो दोस्तों के साथ समय बिताना चाहती है और कई बार ये होता है कि परिवार से थोड़ी दूरी जो है वो बनाना चाहती है, क्योंकि उसे ज्यादा हम कहें कि ज्यादा अच्छा
1: आजादी
0: लगता है
1: बिल्कुल,
0: अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों के बीच में टोका टोकी नहीं होती,
1: ये
0: माता
1: उम्र
0: पिता
1: ही ऐसी होती है।
0: बिल्कुल ये सामान्य होती है अवस्था। इस उम्र में हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ये उम्र सबके साथ होती है और इस उम्र में एक बच्चा जो होता है वो अपनी स्वतंत्र पहचान विकसित करना भी चाहता है।
1: बिल्कुल
0: बस हमें ये हमारा फर्ज ये है कि हम ध्यान दें उसके मित्र कैसे हैं, मित्र मंडली कैसे हैं, साथ ही उसकी रुचि या जो दैनिक गतिविधियां हैं उसके बारे में हमें जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। अगर हमें लगता है कि कुछ बदलाव अचानक से आए हैं, मान लीजिए माया अचानक से बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो गया है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन यानी हम कहें कि उसके
1: मूड स्विंग
0: व्यवहार में
1: हुआ,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: मूड स्विंग होने लग गया है, वो अकेलापन ज्यादा पसंद करने

0: लग गया या उसका आत्मविश्वास जो है उसमें भी अगर कमी आने लग गई है, तो उस वक्त हमें सचेत हो जाना चाहिए, उसी समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जो है वो बन जाती है। साथ ही हम बात करें बेटी के स्वास्थ्य की, तो नियमित ध्यान देना बहुत जरूरी है। आजकल हम देखते हैं कि पीरियड्स की अगर हम बात कर रहे थे माया, पीरियड्स की उम्र होती थी 14 से 15 साल, आजकल 10 से 11 वर्ष की जो बच्ची है, ये सब जो है सोशल मीडिया का हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा ये है कि खान पान जो जंक फूड है, ज्यादा खटाई खाना या पैकेट्स वाले फूड जो है वो ज्यादा खाना, संतुलित आहार नहीं लेना, नींद जो है वो पूरी नहीं होना, शारीरिक गतिविधि कुछ नहीं होना, इसके कारण भी हो जाता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ बच्ची की व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो भी उसकी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। उसे हम सिखाएं कि उसके शरीर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो किस तरीके से विकसित हो सकता है, इसमें हम उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरों की तुलना करने की बजाय उसे उसकी क्षमताओं और उसकी जो उपलब्धि है उसकी सराहना जो है हमें करनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और बेटी के जीवन में आने वाले बदलाव हैं, विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया, इन परिवर्तनों को हमें समझना है और स्वीकार करना है कि माता पिता की जिम्मेदारी भी है। यदि माता पिता समय रहते बेटी की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को समझ ली, तो वह आत्मविश्वासी और स्वस्थ और सफल नागरिक बन सकती है। बेटियों को केवल सुरक्षा ही नहीं, विश्वास, सम्मान और संवाद का अवसर भी चाहिए। जब परिवार उनकी भावनाओं को समझता है, उनके सपनों को पंख देता है और वह हर परिस्थिति में उनका साथ खड़ा रहता है, तो तब वे जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनती है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। तो हमें अपनी बेटियों को हो रहे सकारात्मक और आवश्यक बदलाव पर ध्यान दें, उन्हें समझेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनकी उज्ज्वल भविष्य की जो मजबूत नींव है वो रखेंगे।
0: बिल्कुल माया, हम कह सकते हैं कि जब परिवार का साथ और समझ मिलती है, तो किशोर अवस्था का ये जो संवेदनशील दौर ही हम कहेंगे, ये भी उसके लिए सीखने और आगे बढ़ने का अवसर बन जाता है।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे

0: उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि

0: करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: बिल्कुल, विराम के बाद बात करते हैं बहनों। आज के जो फैशन है, या कहते हैं कि फैशन ट्रेंड्स है, वो जरूरत है या दिखावा? तो आज के इस युग में कहते हैं कि जिसका प्रभाव समाज में लगभग हर वर्ग में दिखाई देता है, और फैशन शब्द सुनते ही हमारे मन में नए कपड़े या यूं कहें आकर्षक डिजाइन, आधुनिक पहनावे, जूते, हेयर स्टाइल, जीवन शैली की जो तस्वीर है वो हमारे मन में उभर कर सामने आती है। और आज के युग की तेजी से बदलते फैशन का युग है। हर मौसम, हर वर्ष या कभी कभी हर महीने नए फैशन ट्रेंड सामने आते हैं। तो सोशल मीडिया, फिल्में, विज्ञापन देख के, या हम यूं कहें कि कुछ ब्रांड देख के, हम इस फैशन को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि फैशन वास्तव में हमारी जरूरत है या फिर केवल दिखावा है। तो हमें ये समझना है कि जितनी हमारी जरूरत है, कहते हैं पहनावा ऐसा होना चाहिए जो हमारी जीवन शैली को बदल दे। समय के अनुसार पहना, व्यवहार, सजावट, जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन ये केवल कपड़ों तक ही सीमित नहीं है बहनों, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी, या कहते हैं यूं कहें कि अभिव्यक्ति का भी एक माध्यम है। तो हमें फैशन को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पहनावा है उसमें शालीनता हो, ताकि सामने वाले दिखने वाले में भी अच्छे लिखे और हमारा जो व्यक्तित्व है उसको चार चांद लग जाए। उचित पहनावा व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब हम साफ सुथरे और अवसर के अनुसार कपड़े पहनते हैं तो हमारा व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली बनता है। और जैसे हम स्कूल जाएं या कार्यालय है या इंटरव्यू के लिए जाएं, तो किसी सामाजिक कार्यक्रम में उचित फैशन व्यक्ति की सकारात्मक छवि को प्रस्तुत करता है। और समय और परिस्थिति के अनुसार जो बदलाव है, जिसमें जैसी जीवन शैली है परिवर्तन आ रहा है, ऐसे में अगर पहनावे में रहन सहन में बदलाव भी स्वाभाविक है। लेकिन जैसे गर्मी का मौसम है तो हम हल्के और सूती कपड़े पहने, सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनना भी एक प्रकार का व्यवहारिक फैशन ही है। लेकिन आत्म अभिव्यक्ति है वो जरूर रखनी है, क्योंकि कोई पारंपरिक पहनावा पसंद सबका अलग अलग होता है, कोई आधुनिक है, तो व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार व्यक्ति को अपनी पहचान व्यक्त करने के अवसर देता है। तो हमें उस पहचान में अपनी शालीनता बनाए रखने जरूरी है, न कि ब्रांड और फैशन के पीछे भागना।
4: जी माया, फैशन को पूरी तरह से दिखावा कहना उचित नहीं होगा। मनुष्य जो होता है वो स्वभाव से सुंदरता और आकर्षण की ओर झुकाव रखता है। साफ सुथरे और अवसर के अनुरूप कपड़े पहनना जो होता है वो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। स्कूल हो, कॉलेज हो, या जो भी आपकी ऑफिस है, या कोई भी सामाजिक समारोह होते हैं, उसमें हमें उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा पहनावा होता है वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है। इसके अलावा हमारी जो फैशन होती है वो हमारी पसंद, हमारी संस्कृति और हमारी सोच को व्यक्त करने का अवसर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सीमा तक फैशन जीवन की आवश्यकता जो है वो हम मान सकते हैं। वर्तमान युग की अगर हम बात करें तो फैशन उद्योग जो है वो एक रोजगार का एक बड़ा स्रोत है। लाखों लोग वस्त्र निर्माण, डिजाइनिंग, मॉडलिंग, और हम कहें कि जो इससे संबंधित जो भी क्षेत्र होते हैं उसमें जुड़े हुए होते हैं, और फैशन के कारण नए व्यवसाय जो है वो विकसित होते हैं, और इससे हम कहें कि अर्थव्यवस्था जो है उसे भी लाभ मिलता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि फैशन केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं है बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता भी है।
3: बिल्कुल बहनों, क्योंकि आज कई लोग ऐसे होते हैं जो विंटेजी महंगे ब्रांड पहनने को ही फैशन समझने लगे हैं। कई बार लोग अपनी आर्थिक स्थिति से भी अधिक खर्चा केवल इसलिए करते हैं ताकि समाज में उनको वो प्रभावशाली दिख सकें। ये प्रवृत्ति आर्थिक दबाव पैदा करती है और हमारा जो बजट है वो भी डगमगा जाता है। तो हमें ऐसे फैशन को इग्नोर करना चाहिए, न कि अपनी जो जरूरत समझ के वही अपनाना चाहिए। आज का जो दूसरों की तरह दिखने का प्रयास न करें, अक्सर अपनी वास्तविकता को पहचानें और उसके अनुसार ही जीवन शैली को अपनाएं। क्योंकि फैशन की अंधी दौड़ में कई बार लोग नए नए कपड़े सामान खरीद तो लेते हैं जबकि उनकी वास्तविक आवश्यकता नहीं होती है। अपन आवश्यकता से अधिक जो सामान खरीद लेते हैं तो हमारा जो आर्थिक बजट है वो भी डगमगा जाता है, इससे धन की भी बर्बादी है वो भी होती है और आत्मविश्वास में भी कमी आती है। जब व्यक्ति स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगता है तो उसमें हीन भावना विकसित हो सकती है। उसे लगने लगता है कि महंगे कपड़े या आधुनिक वस्त्र ही सफलता का प्रतीक है। ये सोच मानसिक तनाव को जन्म दे सकती है। तो हमें इस चीज को न अपना के अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है और व्यक्ति को आकर्षक बनना है तो रचनात्मकता को भी विकसित करना है और अपनी पढ़ाई

0: पे जो पढ़ाई से ध्यान नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि अगर हम इन चीज़ों के पीछे जाएं तो हमारा पढ़ाई में ध्यान भटक जाता है, आर्थिक बोझ है उसे दब जाते हैं, हमारे बजट है वो डगमगा जाता है और मानसिक तनाव में हम आ जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को दूर रखते हुए सादगी और शालीनता के साथ जो वस्त्र है वो पहनना चाहिए, ताकि हमारा जो फैशन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये व्यक्ति विकास, आत्म अभिव्यक्ति और सामाजिक पहचान के माध्यम हो सकता है। लेकिन यदि फैशन का उद्देश्य केवल दिखावा या प्रतिस्पर्धा या दूसरों को प्रभावित करना बन जाए तो ये व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो हमें फैशन को समझदारी और संतुलन के साथ अपनाएं। फैशन हमारे व्यक्तित्व को निखारे, हमारी संस्कृति को सम्मान दे और हमारी आर्थिक क्षमता के अनुरूप हो। यदि हम याद रखें कि व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता उसके विचारों, व्यवहारों और चरित्र में होती है, न कि उसके बाहरी पहनावे में, तो हमें दिखावे का साधन न बनने दें और अपनी सादगी और आत्मविश्वास का तथा संतुलन को अपने जीवन में का आधार बनाएं।
1: बिल्कुल माया, हम यही कह सकते हैं कि फैशन ट्रेंड्स जो है वो ना तो पूरी तरह से जरूरत है और ना ही पूरी तरह से दिखावा। हम कह सकते हैं ये दोनों का मिश्रण है और हमारी समझदारी इसी में है कि हम अपनी आवश्यकताओं, हमारी आर्थिक स्थिति और व्यक्तित्व के अनुसार ही फैशन को अपनाएं। संतुलित और विवेकपूर्ण फैशन जो है वो हमें आकर्षण बनाने के साथ साथ हमारे आत्मविश्वास और हमारी सामाजिक पहचान को भी मजबूत करता है। इसलिए फैशन का अनुसरण करना उचित है, लेकिन अंधानुकरण से बचना है और सादगी और मौलिकता का वो महत्व जो है वो देना जरूरी है।
0: बिल्कुल।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
5: बिल्कुल, विराम के बाद बात करते हैं बहनों। पहनावे में शालीनता का रखें ध्यान। तो किसी भी व्यक्ति का पहनावा उसकी पहचान का पहला परिचय होता है। जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसके व्यवहार और विचारों को जानने से पहले उसके पहनावे पर हमारी नजर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि वस्त्र केवल शरीर ढकने का साधन नहीं है, बल्कि वे हमारी सोच, संस्कार और व्यक्तित्व और जीवन शैली को भी दर्शाते हैं। तो आज के युग में फैशन और आधुनिकता का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और नए ट्रेंड्स के से ऐसे समय में शालीनता का महत्व और भी बढ़ जाता है। आधुनिकता अपनाना गलत नहीं है, लेकिन पहनावे में गरिमा, सादगी और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अवसर के अनुसार उचित वस्त्र पहनना, साफ सुथरा और व्यवस्थित रहना और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखना और ऐसे पहनावा चुनना जो व्यक्तित्व को निखारे। शालीनता व्यक्ति के व्यवहार, भाषा और पहनावे सभी

0: दिखाई देती हैं। तो हम समाज की जो भूमिका है उसको अपना के ही हम जो कपड़ों का चयन करें तो हमारी शालीनता है वो बनी रहती है, क्योंकि व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और साफ सुथरे और मर्यादित वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक भी बनाते हैं। शालीन पहनावा आत्मविश्वास बढ़ाता है और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव भी छोड़ता है।
1: बिल्कुल माया, भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो शालीनता का विशेष महत्व जो है वो रहता है हमारी भारतीय संस्कृति में। हमारे जो पारंपरिक वस्त्र होते हैं जैसे साड़ी है, सलवार कमीज है, कुर्ता पाजामा है, ये जो होते हैं ये सुंदरता के साथ साथ हमारी जो मर्यादा होती है उसे भी दर्शाते हैं। हालांकि हम ये देखते हैं कि समय के साथ साथ पहनावे में बहुत परिवर्तन भी आ गया है और ये स्वाभाविक भी है, फिर भी हमें अपनी सांस्कृतिक गरिमा और सामाजिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। आधुनिक वस्त्र जो है वो पहनने का समय जो होता है वो भी सादगी और संतुलन, उनको पहन के भी हम सादगी और संतुलन जो है वो बना के रख सकते हैं। पहनावे में शालीनता का अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति अपने जो वस्त्र होते हैं उसका चयन दूसरों की भावनाओं और सामाजिक वातावरण का सम्मान करने के लिए भी करता है। अलग अलग स्थान होते हैं, अलग अलग अवसर होते हैं, उसमें हमारी अलग गरिमा भी होती है, इसलिए उन सब अवसरों को देखते हुए हमें अपने जो वस्त्र होते हैं उनका चयन करना चाहिए। और हम कहें कि इसी में हमारी समझदारी है और हमारी परिपक्वता का जो परिचय होता है वो हमारे कपड़ों से ही मिलता है। शालीनता जो होती है वो पहनावा, शालीन पहनावा जो होता है वो हमारे व्यक्तित्व को निखारने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, वो जो कि बाहरी सुंदरता को नहीं बढ़ाता बल्कि आंतरिक जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारे मूल्य होते हैं उनको भी दर्शाता है। हमें फैशन के साथ साथ हमारी मर्यादा, हमारी सादगी और जो हमारी सभ्यता होती है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और यही संतुलन होता है माया जो हमारे जो व्यक्तित्व होता है उसको आकर्षक बनाता है, सम्मानीय बनाता है और हम किसी के लिए आदर्श योगी नहीं बन जाते। ये सारी चीजें मैटर करती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हर इंसान को चाहिए कि खुद का जो पहनावा होता है उसमें शालीनता जो है उसका विशेष ख्याल रखे।
0: बिल्कुल, कहते हैं कि धार्मिक स्थल होते हैं विंटा जी, तो धार्मिक स्थानों पर भी मर्यादित और सम्मानजनक वस्त्र पहनना हमारी संस्कृति और आस्था का सम्मान है। और जब हम सामाजिक समारोह में जाते हैं या शादी विवाह या उत्सव या अन्य कार्यक्रमों में आकर्षक वस्त्र पहनना स्वाभाविक है, लेकिन शालीनता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। और आज के जो युवा वर्ग है उसमें जो सबसे अधिक है फैशन को प्रभावित करना, और सोशल मीडिया में जैसे देख के हमारे इसको प्रभावित होते हैं तो इन शालीनता को पीछे छोड़ देते हैं। और व्यक्तित्व केवल कपड़ों से नहीं बनता है, चरित्र और व्यवहार भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना शालीनता है। फैशन में संतुलन आवश्यक है और लोग अक्सर दूसरों की तस्वीरें देखकर उनके जैसा दिखने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली दुनिया हमेशा वास्तविक नहीं होती है। दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी सुविधा, पसंद और मर्यादा के अनुसार पहनावा चुनना चाहिए। और माता पिता को और शिक्षक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अपने बच्चों में शालीनता की भावना बचपन से ही विकसित करनी चाहिए। उनको साफ सफाई का महत्व को बारे में बताना चाहिए, अवसर के अनुसार जो कपड़े हैं वो पहनना चाहिए और सादगी का मूल्य है उसके बारे में बताना चाहिए। जब बच्चे शुरू से ही सही मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो वो बड़े होकर संतुलित व्यक्तित्व के धनी बनेंगे और जो उनमें आत्मसम्मान है वो भी बढ़ेगा और सादगी सुंदरता है वो बढ़ती रहेगी और जो दिखावा है उनसे वो दूर रहेंगे। और पहनावा हमारे व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह ये हमारी सोच, संस्कृति और जीवन मूल्य को प्रतिबिंबित करता है। और आधुनिकता और फैशन को अपनाना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ शालीनता, सादगी, मर्यादा बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शालीन पहनावा हमें आत्मविश्वास तो देता ही है, सम्मान दिलाता है और समाज में सकारात्मक छवि है वो बनाता है। ये हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान को भी दर्शाता है, इसीलिए हमें ऐसा पहनावा अपनाना चाहिए जो सुंदरता के साथ साथ गरिमा और संतुलन का भी परिचय दे। तो हमें फैशन की अंधी दौड़ में शामिल होने के बजाय शालीनता, सादगी और आत्मसम्मान को अपने जीवन के हिस्सा बनाएं, क्योंकि वास्तविक सुंदरता केवल वस्त्रों से नहीं बल्कि विचारों, व्यवहारों और व्यक्तित्व की गरिमा में होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडाबेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रंगरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को

0: संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: देव जी, प्रवती परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश सिंह खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाइयों और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तो

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृहमंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है।

0: है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मिति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये शुरू केंद्र है। श्रोताओं, दिन के 2:30 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम तनाने नए पुराने।

आकाशवाणी के चूरू केंद्र से ही श्रोता सुन रही हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। श्रोताओं आपके रेडियो हिट पर अब आशिकी फिल्म का गाना अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे अनुराग फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। हमारा ये प्रसारण रेडियो के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। जब सुनिए अफसाना प्यार का इस फिल्म से गीत, आवाजें आशा भोसले, उदित नारायण।

श्रोताओं, आप सुन रही हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से कार्यक्रम तराने नए पुराने। आपके लिए कार्यक्रम संबंधी सूचना, आज है महीने का तीसरा शनिवार। आज हम आपके फोन कॉल्स रिकॉर्ड करेंगे अभी दिन में 3 बजे से, यानी करीब 9-10 मिनट बाद। इसके लिए आपको हमारे केंद्र के स्टूडियो के जो फ़ोन नंबर हैं 01562253644 पर 3 बजे से 3:30 बजे तक फ़ोन करना है, 01562253644। और एक और हमारी अपील, जो श्रोता नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और फ़ोन इन कार्यक्रम में भाग लेते रहते हैं, वो थोड़ा सा अपने अन्य साथियों के लिए स्थान छोड़ें, कुछ अंतराल के बाद फ़ोन करना शुरू करें ताकि हमारे नए नए श्रोता हमसे जुड़े। पिछले कार्यक्रम में भी बहुत सारे नए फ़ोन हमारे पास आए। उम्मीद है हमारी इस अपील पर श्रोता ध्यान देंगे।

आन मिलो सजना इस फिल्म का ये गीत आप सुन रही थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने अब यहीं समाप्त होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 3 बज चुके हैं, हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 3:55 पर सायंकालीन सभा में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं। हमारी सायंकालीन सभा का प्रसारण अब आरंभ होता है। सभा की शुरुआत में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने के समारोह का प्रसारण। ये कार्यक्रम हम आपको आकाशवाणी दिल्ली से सुनवा रहे हैं। आइए दिल्ली चलते हैं।

0: श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan scheme, to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams. And we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके। चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
2: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests, and Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country, in the district and block levels and gram panchayat levels, with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks, they are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
2: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode, we as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop, we have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, as the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, Primary Agricultural Cooperative Society and State District Gram Panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, this promise never loses its importance.
1: बिल्कुल, तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार।

0: Raikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय आपसे कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतजार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर देखते हैं इसमें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट। These were the words of this great man who gave vision to the people of West Bengal that yes, we as part of India have to make India a Soni Ki Chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, brethren, we remember all those great years. During the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहां का साहित्य, वहां की कला, वहां की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
2: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the Digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister.

0: farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also fertilizers, it is also the good quality of seeds, it is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है. और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं. इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्रीस्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है. प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा. 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी. और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्रीस्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं. इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा. और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी. तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट.
0: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी. And I want to say that it won't just be the procurement of things that will happen in a very smooth and a very functional way, but the whole line of credit. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates, and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The Kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Viksit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है. और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है, ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके. आप ऐसा सोचिए कि वैभव, किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस

0: होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें, ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आप आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉइल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो, आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: Absolutely, Siddharth, the word that you've used and you had used this word earlier as well, which is sashakt banana. That is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question. And that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world. But he knows and he trusts the government. And then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap atmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paayein, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India Mission. You can be a part of the banking system, of the financial system. You can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing flying in the air?
0: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो। और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Shri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Shri Suvendu Adhikari. People craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
1: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय और प्रधानमंत्री जी के साथ
2: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी,
1: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु अधिकारी जी
2: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति.
1: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
2: और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला
1: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को.
2: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई.
0: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government. The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
1: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं.
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम. भारत केसरी, लौह प्रणाम. स्वामी प्रणवानंद, लौह प्रणाम. सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथ्वीर सबचे जनप्रिय नेता, जिनी 140 कोटी भारतवासीर হৃদয়ের অন্তরের আত্মীয়, যিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন না, প্রধান সেবক বলেন, উনাকে বাবা তারকনাথের পুণ্যভূমি তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমি প্রণাম, শ্রদ্ধা এবং স্বাগত জানাচ্ছি. আমাদের

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: द रिलीज ऑफ द पीएम किसान Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made, and the one vision that is in mind is of course of

0: said Bharat for developed India by 2047.
1: जी हाँ प्रधानमंत्री, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
2: And Siddharth, more than 2 crore women beneficiaries are amongst those farmers who will be getting this direct transfer, this installment of PM Kisan Samman Nidhi. Imagine the level at which this scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. Manch par virajman, Rajpal R.N. Ravi ji. यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की ये चमक गांव-गांव में खुशी और विश्वास का भाव मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां

स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने

दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस
बंगाल

वारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को

बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट मानी शेष का शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी

और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को

0: मजबूती देनी है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।
3: श्रोता, अभी सुन रहे थे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने का प्रसारण। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं हमारे युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

जी दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है शनिवार और शनिवार को होता है हमारा खास सेगमेंट आपकी पसंद। जी बिल्कुल दोस्तों, जहां आपकी फरमाइश होती है ईमेल के जरिए आप हमें इसे भेजते हैं। और अभी हम सुन रहे थे फिल्म प्रिंस से गीत तेरे लिए, और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है सुभाष चंद्र, जो हमें लिखते हैं चुनाराम की ढाणी तारानगर से। साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश मिली है जेल रोड जालंधर से रोशन जहां मन्नत जहां, और सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती और परवीन गुजराती। प्रोग्राम में ईमेल करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। चलो

0: आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।

0: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
0: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
0: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: जी दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म प्रतिज्ञा से सुन रहे थे गीत मैं जट यमला पगला दीवाना। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है नेकीराम रेवाड़, संतोष, ममता, कल्पेश, शैलेश रेवाड़, गांव सैंसवास, जिला झुंझुनू से। साथ ही श्रोता साथी लिखने वाले हैं कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी, अम्बाला से आशु खान और सोनाली खान, चंद्रनगर सहारनपुर से और डोंडी लोहारा से प्रभा, अनुश्री और पूजा डोली, चंद्रनगर सहारनपुर से सोनाली डोमिन और पथिक डोम। प्रोग्राम में ईमेल करने के लिए आप सभी का शुक्रिया।

जी दोस्तों, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज में सुन रहे थे हम ये गीत, और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शादुल शहर जिला श्रीगंगानगर से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, और साथी हैं जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार, संदीप, प्रभा रानी और कशिश, और साथ ही साथ लिखने वाले श्रोता साथी हैं सहारनपुर से सुरेश और संदीप, गोरैया जालंधर से दीपक एरावत, जेल रोड झांसी से आशा जाधव और प्रभा, डोंडी लोहारा बालोद से प्रभा और राधिका मुखर्जी। प्रोग्राम में ईमेल करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। चलते हैं अगली फरमाइश गीत की ओर।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम
1: किसान। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चोरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: जी दोस्तों, खास सेगमेंट आपकी पसंद में ब्रेक पर जाने से पहले मोहम्मद रफी की आवाज में पत्थर के सनम से हम सुन रहे थे गीत, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है ग्राम पंचायत सिरसिला फवारा चौक जिला चूरू राजस्थान से। लिखने वाले श्रोता साथी है संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल कार्तिक, सचिन चौहान रामसरा वाले और समस्त सोनगरा परिवार। ददरेवा तहसील राजगढ़ से गंगा शिम्पा, उषा, अवनी, अक्षय, हासिम कुरेसी, साथ ही साथ बेताब रेडियो लिसनर क्लब जो पटना बिहार से है, वसीम अकरम, सालेहा और गुड़िया, और डोंडी लोहारा बालोद से देव, राधिका और आरती। प्रोग्राम में ईमेल करने के लिए आप सभी का शुक्रिया।

जी दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में फिल्म हमजोली से सुन रहे थे हम ये गीत। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा ने, जो लिखते हैं, हमेरी कला झुंझुनू से, महेश जानू बहादुरवास झुंझुनू से, सुखजिंदर बुगालिया चिड़ावा झुंझुनू से, बलजीत कांटीवाल बिदासर, राजा नंदवानी, रजत रोहित केशव मुकुल मनीष सुमित साक्षी और किरण नंदवानी नई सड़क चूरू से, जगदीश मंडल अभिषेक मंडल गुदड़ी बाजार चूरू से, राकेश कुमार दूधवा मीठा चूरू से, अरविंद खारड़िया लादड़िया चूरू से, निशांत फुंडे ओम प्रकाश मानसी चेतन गोंदिया महाराष्ट्र से। प्रोग्राम में ईमेल करने के लिए आप सभी का शुक्रिया।

जी दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म नया दौर से हम सुन रहे थे ये गीत। और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से। साथ ही श्रोता साथी हैं फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार छत्तीसगढ़ से, प्रभा रानी और आशा और देवशंकर, उमेर खेड़ से सिराज और बॉबी खान। प्रोग्राम में मिल करने के लिए आप सभी का शुक्रिया।

जी दोस्तों, फिल्म मस्ताना से सुन रहे थे हम ये गीत, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल ईशान, पूजा परिहार, और साथी श्रोता साथी हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। प्रोग्राम में ईमेल करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और साथियों कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए ईमेल एड्रेस रहता है youthexpresschuru@gmail.com, तो आप इस पर ईमेल कीजिएगा। फिलहाल प्रोग्राम से जाने की इजाज़त दें आपकी दोस्त डिंपल शर्मा को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के

0: जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive

श्रोता कार्यक्रम की शुरुआत में सुन रहे थे स्वदेश फिल्म का गीत, आवाज़ दी ए आर रहमान की।

श्रोता अभी सुन रहे थे हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गीत, आवाज़ें थी उदित नारायण, जसविंदर नरूला और साथियों की। इस देशभक्ति गीत के साथ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह ओडिशा राज्ये

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9.5

0: करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18,880 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, देश की चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बताया। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल होगी, पुख्ता इंतजामों के लिए आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल, राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबूराज में होगा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। किसानों को 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने ये सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने किसान कल्याण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।
0: पीएम किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय समारोह पाली के सुमेरपुर में हुआ। पीएम किसान उत्सव से प्रदेश के 66,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 4,28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त हो चुकी है। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पाली के नेत्रा में ग्रामीण सेवा शिविर का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण कर लाभार्थियों से फीडबैक लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने लोगों से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
2: ग्रामीण सेवा शिविर ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि किसान, मजदूर, दिव्यांग, हमारी माता बहने, हमारे बुजुर्ग, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसलिए हमने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर लगातार हमारे पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। इन सेवा शिविरों में ऐसे काम, चाहे वो शुद्धिकरण के हो, नामांतरण के हो, बंटवारे के हो, रास्ते के हो, पेंशन मिलती हमारे बुजुर्गों को वो किसी कारण से रुकी हुई हो, ऐसे कई तरह के काम हमारे इन शिविरों में होते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो।
0: देश में बने नौसेना के 3 जहाज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का कल अनावरण होगा। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। नौसेना के अनुसार इन जहाजों के निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। देश की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में इनका अनावरण करेंगे। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की ओर से की गई समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। समिति के अनुसार इन दवाओं के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। इन प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारक और कुछ एंटीबायोटिक शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत की पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हर नागरिक गौरवान्वित है। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश के विश्वसनीय और नवोन्मेषी चुनाव प्रबंधन को वैश्विक मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान आई डी

0: IAEA ने भारत को अध्यक्षता दी है।
1: भारत का हर नागरिक इस बात पर गौरव महसूस करता है कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे अधिक पारदर्शी, कुशल और सक्षम लोकतंत्र भी है। भारत की चुनावी प्रक्रिया

0: से कहनी थी, जो अपेक्षाएं थी वो बताई, जो उन्होंने विगत SIR में इतना अच्छा काम किया है उसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया और उनके प्रश्न और उत्तरों का जवाब भी दिया।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज सीतापुर स्थित JECC में प्रदेश के बूथ स्तरीय अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 12 राज्यों में हुई SIR प्रक्रिया में राजस्थान को पहले नंबर पर लाने में BLO की भूमिका की सराहना की। उन्होंने जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर BLO और सुपरवाइजर्स के सुझाव और अनुभव भी सुने। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नीट UG 2026 परीक्षा कल दोबारा होगी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आज मॉक ड्रिल की गई। परीक्षा को सुचारू, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए ये अभ्यास किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुए ड्रिल में 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल हुए। ATA के अनुसार नीट UG पुनर्परीक्षा देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के मद्देनजर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर लगाई गई रोक 22 जून तक प्रभावी रहेगी। इधर प्रदेश में री नीट पुनर्परीक्षा के लिए 25 जिलों में 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर करीब 2,09,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, SOG और IB पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। साथ ही CRPF की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर से 47 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमर जवान ज्योति पर हुए इस कार्यक्रम में 29 बसें राजधानी जयपुर और 18 बसों की सौगात भीलवाड़ा को मिली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई बसों से प्रदूषण में कमी आएगी। श्री शर्मा ने ई बस में अमर जवान ज्योति से स्टेट हैंगर तक का सफर भी किया। गौरतलब है कि PM ई बस योजना के तहत राजस्थान को 1,150 बसें मिलेंगी। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 8 जिलों में 675 ई बसें चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कल बीकानेर दौरे का कार्यक्रम है। श्री वैष्णव लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री दोपहर में जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वे जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। श्री वैष्णव खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। श्री वैष्णव 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विकसित की गई यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण करेंगे। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। दुनिया भर में स्वास्थ्य और खुशहाली के माध्यम के रूप में योग एक उत्सव के साथ ही जन आंदोलन बन चुका है। इस बार 200 से अधिक भारतीय दूतावासों पर योग सत्र होंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। इस बीच आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि सरकार ने कार्यस्थलों पर योग ब्रेक के लिए वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है। आयुष मंत्रालय की ओर से विकसित इस मोबाइल एप्लीकेशन से काम के बीच 5 मिनट का योग ब्रेक लेकर लोग खुद को तरोताजा और तनाव मुक्त कर सकते हैं।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग कार्यक्रम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह सिरोही के आबूराज में रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी जयपुर

0: के जंतर मंतर पर सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। साथ ही एसएमएस स्टेडियम, एल्बर्ट हॉल, जल महल सहित शहर के प्रमुख स्थलों पर भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली से 13 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन के काउंटडाउन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत प्रदेश भर में लगातार जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज डीग और जैसलमेर में योग जागरूकता रैली निकालकर निरोग रहने का संदेश दिया गया। सलुम्बर जिले में सरनी नदी को साफ करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने बताया कि सफाई अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने नदी को साफ रखने और भविष्य में गंदगी नहीं फैलाने का भी संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18,880 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। देश की चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बताया। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल होगी। पुख्ता इंतजामों के लिए आज देशभर में मॉक ड्रिल की गई। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबूराज में होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख लक्ष्मीचंद नागर ने तैयार किया है। वराह नगरी के नाम से प्रसिद्ध और राज्य के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित 12 जिले में कल 2 महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट यूजी पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी कल मनाया जाएगा। इन्हें लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय में 3, अंता में 2 और अटरू में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, यानी कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवरलाल जनागल को नोडल अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ कमल कुमार जांगिड़ को पुलिस नोडल अधिकारी बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी तैयारियां व्यापक तौर पर की जा रही हैं। सभी ब्लॉक्स में सामूहिक योगाभ्यास होंगे, इसे लेकर जिला कलेक्टर ने बीते दिनों बैठक की। इस अवसर पर योग दिवस के आधिकारिक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। बैठक में योग स्थलों पर पेयजल, चिकित्सा सुविधा, छाया और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जिले में इन दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने अंता तहसील की ठीकरिया ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा की। शिविर में आवासीय पट्टे वितरित किए गए, मंगला पशु बीमा पॉलिसियां सौंपी गई तथा विभिन्न प्रकरणों के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्रदर्शित की गई। आगामी मॉनसून के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ गंगा दशमी के अवसर पर मनिहारा तालाब पर हुआ। अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को जन भागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाना रहा। इसके तहत जल स्रोतों की सफाई, पारंपरिक जल संरचनाओं के संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की गतिविधियां शुरू की गई। इससे पहले श्रीराम स्टेडियम से प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें विद्यार्थियों, अधिकारियों और आमजन ने भाग लिया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रतिभागियों ने पानी बचाने का संदेश दिया। इस दौरान जिला प्रभारी सचिव हरिमोहन मीणा ने कहा कि जल जीवन का आधार है और इसके संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने लोगों से जल स्रोतों की रक्षा करने, भूजल स्तर बढ़ाने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभियान का समापन हुआ। वहीं इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। इसके लिए जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम रखे गए और पौधरोपण किया गया। साथ ही एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, मतदान केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए गए। इसके साथ ही प्रतियोगिताओं और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। बीते दिनों जिला स्तरीय पर्यटन विकास समिति की बैठक हुई। जिले में पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को मिलकर योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रामगढ़, क्रेटर और सोरसन क्षेत्र के अमलसरा स्थित टूरिस्ट क्षेत्रों को पर्यटन के दृष्टिकोण से और अधिक विकसित करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। जिला परिषद सभागार में बीते दिनों नारी चौपाल और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इन सब गतिविधियों के बीच जिले में मौसम का भी मिला जुला रूप देखने को मिला। कहीं तेज गर्मी से लोगों को परेशानी हुई तो वहीं आंधी और तूफान ने भी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। हालांकि इससे भीषण गर्मी से राहत मिली है और इस बारिश के बाद किसान अपने खेतों में खरीफ की बुआई में जुट गए हैं। 12 जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा 9,44,00,000 बत्ता किसाना रा खाता माए। पीएम किसान सम्मान निधि रा तेत 18,880 करोड़ रुपया भेजा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देशवी चुनावी प्रक्रिया ने भरोसेमंद और साफ सुथरी बताई। जयपुर माए बीएलओ संवाद कार्यक्रम माए शामिल भया। नीट यूजी 2026 परीक्षा काल ओ जूली जावेला। देश भर माए आज पुख्ता इंतजामात्री परख करीची। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल मनायो जावेला। राज्य स्तर रो कार्यक्रम आबू राज माए भेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश रा 9,44,00,000 बत्ता किसाना रा बैंक खाता माए पीएम किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त रा तौरों 18,880 करोड़ रुपया बत्ती रकम भेजी। पश्चिम बंगाल रा तारकेश्वर माए राखी जिया कार्यक्रम माए प्रधानमंत्री आ रकम भेजी। ई मौके व किसाना रा भला रो सरकार रो संकल्प दोहरायो।
3: स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।
2: पीएम किसान सम्मान निधि रा तेत रकम जारी करण रो राज्य स्तर रो कार्यक्रम पाली जिला रा सुमेरपुर में राखी चियो। पीएम किसान उत्सव रे जरिए प्रदेश रा 66,000 बत्ता किसाना रा खाता माए रकम भेजी जी। पात्र जनता रा बैंक खाता माए रकम भेजण री दुनिया री मोटी योजनावां माए शामिल पीएम किसान सम्मान निधि रा तेत हाल ताई किसाना रा खाता माए 4,28,000 करोड़ रुपयाऊं बत्ती रकम भेजी जा चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि रा तेत पात्र किसाना ने हर साल 6,000 रुपया री मदद दी जावे है। राज्य स्तर रा कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शामिल फिया। इनु पहले मुख्यमंत्री पाली जिला रा नेत्रा माए लगाई चिया ग्रामीण सेवा शिविर रो जायजो लीनो। ई मौके वे कहो कि राज्य सरकार गांवाई हलका माए विकास सारू लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा जनताओं ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों रो बत्तों बत्तो फायदो लेवन री अरज कीनी।
4: ग्रामीण सेवा शिविर ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि किसान मजदूर दिव्यांग हमारी माता बहने हमारे बुजुर्ग उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए। इसलिए हमने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर

0: लगातार हमारे पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। इन सेवा शिविरों में ऐसे काम, चाहे वो शुद्धिकरण के हो, नामांतरण के हो, बंटवारे के हो, रास्ते के हो, पेंशन मिलती हमारे बुजुर्गों को, वो किसी कारण से रुकी हुई हो, ऐसे कई तरह के काम हमारे इन शिविरों में होते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो।
1: मुख्यमंत्री न्यारी न्यारी स्टॉल्स माथे सरकारी योजनावार और फायदो लेवन वाला सागे बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल कोलकाता माय नौ सेना सारू देश माय बनाई जा तीन जहाज आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय ने पानी माय उतारण रो कार्यक्रम है। आने समुद्री हिफाजत सर्वे और पनडुब्बिया के खिलाफ न्यारा न्यारा अभियान माय काम लिया जावेला। नौसेना रे मुजब ए जंगी जहाज बनावन रा काम माय 232 एमएसएमई इकाई योगदान दिनो। केंद्र सरकार 16 भांति फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाइयां बनावन और बेचण माथे तुरंत रोक लगाती नी है। सुप्रीम कोर्ट रा हुक्म पाछे जानकारां नी समिति कान्यू करी जी सिफारिशों ओ फैसलो करी चियो। समिति रे मुजब आन दवाइयां स्वास्थ्य संबंधी जोखिम वेवन री शंका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यां रा औषधि नियामकां और संबंधित एजेंसियां ने करडायूं रोक लगावन रा हुक्म दीना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहो है कि भारत री साफ गोई सागर निपख चुनाव प्रक्रिया माथे देश रा हर रहवासी ने नाज है। वे आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त कहो कि देश रा भरोसेमंद चुनाव प्रबंधन ने दुनियाई मान्यो है।
2: भारत का हर नागरिक इस बात पर गौरव महसूस करता है कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे अधिक पारदर्शी, कुशल और सक्षम लोकतंत्र भी है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में न केवल मतदाता सूची बल्कि मतदान, मतगणना, इन सभी प्रक्रियाओं में राजनीतिक दलों का या चुनावी उम्मीदवारों का कॉन्करेंट ऑडिट अर्थात भागीदारी रहती। हमने बीएलओस और बीएलओ सुपरवाइजर्स के साथ संवाद किया, प्रश्नोत्तर हुए, जो हमने उनसे बात चुनाव आयोग की तरफ से कहनी थी, जो अपेक्षाएं थी वो बताई, जो उन्होंने विगत एसआईआर में इतना अच्छा काम किया है उसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया और उनके प्रश्न और उत्तरों का जवाब भी दिया।
1: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। नीट यूजी 2026 परीक्षा काल ओजू हैला। इन ठीक तरीकाओं और साफ कोई सागर करावन सारू राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज तैयारियां री परख कीनी। इनमें 2.5 लाख बत्ता सुरक्षा कर्मचारी शामिल फिया। एनटीए रे मुजब नीट यूजी री परीक्षा देश रा 551 शहरा और प्रदेश माए 14 ठोड़ा ओजू ली जावेला, जिनमें 22,79,000 बत्ता विद्यार्थी शामिल फैला। परीक्षा ने ध्यान रखता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे 22 जून ताई रोक रहवेला। ओजू ली जा रही नीट यूजी परीक्षा सारू प्रदेश माए 25 जिला माए 577 सेंटर बनाई चिया है। राज्य माए करीब 2,09,000 उम्मीदवार आ परीक्षा देवेला। परीक्षा साफ कोई सागे करावन सारू पुलिस प्रशासन एसओजी और आईबी पूरी तरह सावचेत है और सीआरपीएफ री ओरों हिफाजत रा पुख्ता बंदोबस्त करी चिया है। प्रदेश माए साफ सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन न बधावो देवन सारू पहली दफा बिजली चालन वाली बसा चलाई जावेला। प्रधानमंत्री ई बस सेवा रा तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर 47 ई बसा ने हरी झंडी बतार रवाना कीनी। अमर जवान ज्योति माथे राखी जिया ई कार्यक्रम माए 29 बसा राजधानी जयपुर और 18 बसा भीलवाड़ा ने दीरी ची। ई मौके मुख्यमंत्री कहो के ई बसाओं हवा माए गंदगी कम घुड़ेला। श्री शर्मा ई बस माए अमर जवान ज्योति स्टेट हैंगर ताई सफरी कीनो। ध्यान जोग है कि पीएम ई बस योजना रा तहत प्रदेश ने 1,150 बसा दी जावेला। योजना रा पहला दौर में प्रदेश रा 8 जिला में 675 ई बसा चलाई जावेला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रो काल बीकानेर रा दौरा रो कार्यक्रम है। वे लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने हरी झंडी बतार रवाना करेला। ई गाड़ियों गुजरात और राजस्थान

0: मा सैर सपाटा रे खास खास ठोणा सीधो संपर्क फै सकेला। इ पाछे केंद्रीय मंत्री जयपुर पूगर खातीपुरा रेलवे स्टेशन नु जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने रवाना करेला। श्री वैष्णव रो खातीपुरा स्टेशन मा थे मेगा कोचिंग टर्मिनल रो उद्घाटन करण रो ई कार्यक्रम है। वह 41 नाना और मझोला टेसना माथे प्लेटफॉर्म ने मोटा बनावन रा काम और 16 टेसना माथे एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली जनता ने सौंपेला। मानव प्रदेश रा न्यारा न्यारा रेलवे टेसना माथे मुसाफिरा सारू विकसित करी जा सुविधा जनता ने सौंपण रोई कार्यक्रम है। 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल मनायो जावेला। इनरो ई साल रो मुद्दो स्वस्थ आयु के लिए योग राखी जियो है। भारत सागे आखी दुनिया माए योग दिवस मनावन रे दौरान प्रदेश माए भारत रा 272 दूतावासा माए योग सत्र राख्या जावेला। राष्ट्रीय स्तर रो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए कोलकाता माए राख्यो जावेला। ए बीचे आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव कहो के सरकार काम रे थोड़ा माथा योग करण बाबत थोड़ी देर री छुट्टी सारू वाई ब्रेक ऐप ही शुरू कीनो है। आयुष मंत्रालय री ओरू विकसित करी जाई मोबाइल एप्लीकेशन नु काम बीचे 5 मिनट री छुट्टी लेर योग करर लोग खुद ने तरोताजा और तनाव मुक्त रख सके है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: प्रदेश में आए सगला जिला ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्कूल कॉलेज और आयुष्मान आरोग्य मंदिर माए योग कार्यक्रम रखा जावेला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके राज्य स्तर रो जलसो सिरोही जिला रा अबू राज माए राख्यो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रोई इन माए शामिल भेवन रो कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर रा करणी सिंह स्टेडियम माए राख्या जावन वाला योग दिवस कार्यक्रम माए शामिल भेला। आयुष मंत्रालय री ओरू राजधानी जयपुर रा जंतर मंतर माए भेड़ो योगाभ्यास कार्यक्रम राख्यो जावेला। ईसा गई SMS स्टेडियम अल्बर्ट हॉल और जल महल समेत शहर री खास खास ठोणा योगाभ्यास कार्यक्रम राख्या जावेला। ई बीचे नई दिल्ली शुरू करी जिया 100 दिन रा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंट डाउन कार्यक्रम रा तहत आखर राज्य माए योग जागरूकता कार्यक्रम राख्या जा रहा है। आज डीगर जैसलमेर माए योग जागरूकता रैली निकाल और निरोगा रेवन रो संदेश दियो चियो। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा 9,44,00,000 बत्ता किसाना रा खाता माए PM किसान सम्मान निधि रा तेत 18,880 करोड़ रुपया भेजा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश री चुनावी प्रक्रिया ने भरोसेमंद और साफ सुथरी बताई। जयपुर माए BLO संवाद कार्यक्रम माए शामिल भया। नीट UG 2026 परीक्षा काल ओजू ली जावेला। देश भर माए आज पुख्ता इंतजामात री परख करी ची। और 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल मनायो जावेला। राज्य स्तर रो कार्यक्रम आबू राज माए फैला। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 107 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के ठीक 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है, एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है, और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की।
4: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाला सगला किसान भाई बहना ने, लड़े स्रोता ने, टावरा ने, बड़े बुजुर्ग ने, सैन भाई राजकुमार का निशो
5: और भाई अरविंद का नियो मोकला मोकला राम राम।
4: राम राम किसान भाई, राम राम। देखो ईटे मैज को खरीफ फसलां की बिजाई है जी आप करण लाग रहा, और टेम सारू जखांगे बिरखा होगी तो बहुत खुशी की बात है कि भी जेठ को महीनो उतरन लाग रही, और ये टाइम देखो जून जुलाई को भक्ति हुआ आपने खरीफ फसलों के बुआई को टाइम, तो आप बुआई आज की करण लाग रहा
5: भाई। अबार एकदम ऊपरली पड़े और ये पढ़ के मैं देखो के अगुती जठे अगेती जगह मानसून के मैंने जठे जठे जगह जगह लोगों के छंटो छिड़को चोखो पांती आ गयो। वे लोग इंज का देखो के बाई तक कर लिया, और कई ठोर है जिको कम छंटो छिड़को पंती आयो, बटे के अपना जगह किसान मैन भाई इंज का पूरी तैयारी के सागे और उडीक कर रहे हैं
4: भाई, उडीक भी कर रहे हैं। एक सागे सागे देखो एक बात और कहनी चाहूं, आप जहां पहली खेती करता तो एक एक किसान का 100-100 बीघा जमीन हुआ करती और संतोषी प्रवृत्ति हुआ करती। सोमने बाजरी जाती जना राबड़ी छाक प्याजी सागे रोटी खा के और संतोष कर लिया करता। अब भाई मंटवारे में जिया जमीन बंट गई, अब कम होगी जमीन। तो आज की है कि जिया खेती का मैं नवाचार तो भलाई करो भलाई, पर वो जुको अंधाधुंध रसायना को जुको प्रयोग हो रहे ने वो बड़ो घातक है। आज जिया गुआर बीजन गया तो गुआर आप शहर में लियाने जाओ तो बी टेमी कहते सी कह भाई जी एक मायने घास ने उगने की एक दवाई है बाली जाओ और भी को छिड़काव करते हो। अब बताओ कि अनाज आपने उग्यो ही को नहीं और भी पहली आप जमीन ने जिसकी विषैली बनान लग गया, तो वो जुखो मतलब विषैले रसायना से जुखो वो अनाज है वो कितो दूषित हो रहा अनाज के मायने। आज आप देखा तो पुरानी टेम वाली ताकत रही को नहीं, पुरानी टेम का मायने अपने घर का मायने खिचड़ा बनाया करता, कुटेड़ी बाजरी दाल बीज अरबी में सात बात का अनाज है जगह गेर के, और वह खिचड़ा बनाता तो ढक है जो उछल उछल के पड़तो पटाखा सा बोलता। आज अनाज में बात ताकत रही क्यों नहीं, क्यों कौन रही का आपा रसायना को जो प्रयोग करे लग गया। तो किसाना नो कहना है कि भाई नवाचार खेती में भलाई करो, बाकी जखी अपनी परंपरागत खेती है जैविक खेती है बिन छोड़ो ना। आज देखा तो हर किसान है जुको जिया शहर की जो खाद है बिक ऊपर निर्भर रह लगी।

0: अब गांव की जकी आपने घर की जकी घर का पशुधन से तैयार होड़ी जकी गोबर की देसी खाद है तो भी की ओड बताओ बाकियां कर लीजिए।
1: भाई खेती के काम के मायने बाजार जको है ने वो के जगह जगह पेंड पेंड के ऊपर आवी हो गयो। और आपना जगह किसान बहन भाई जगह के बाजार के मायने वह जगह लोगन भ्रमित करने वाला जगह प्रचार प्रसार की जिकी सामग्री आवे ने बा में या फेरे जठे खाद बीज की जिकी दुकान ही बंग ऊपर जावा तो आपा चोखो बीज लेन खतरे और बे लोग इन जगह कठिन गठे मीठी बात कर की और बीज जिकी भंवर जाल जिको है ने भी भंवर जाल के मायने जिको अपना जगह बुढ़ा भाड़ा जगह किसान मेन भाई ने बने गिर ली। और देखो के बे आपा खेत के मायने अड़सोतियो करियो कोनी जो पहली है जो सपना दिखान लाग जा के भाई ओ गुआर ले जाओ इंगे सागे आ दुआई छिड़कोगा तो देखो के बीघे कोई तो होगो ओ मोट को बीज ले जाओगा तो इंगे सागे आ दुआई छिड़कोगा तो इया होगो आ दुआई है जकी थे छिड़कोगा खेत के मायने तो फलाना जगह रोग ही जगह कौन लागेगा। और कठिन कठे है जो किसान बहन भाई भी जाल के मायने आता जा रहे ही बाजार ने खेती के ऊपर आवी ना होने दियो भाई। एक तो 5 पीसा फालतू लागे जेब मु प्लस है आपा के जी बाजारों जी की दवाई लेके आवार बा खेतों का मायने छिड़का या कोई भी तरीके को केमिकल ले आ गई अगर जे आपा अपने खेतों का मायने छिड़क रहा तो बा है जो जहरी है बा आपा के बीमारी है जी की खुद के खातर भी बीमारी ले रहा अपने पशुधन के लिए भी ले रहा और आपने जी की खेत की माटी है ने बी के लिए भी आपा कोई न कोई रोग या बीमारी है जी की लेके आ रहा। आपा ने भी बचनो चाहे खेत के मायने देसी जी की खात है बा खेत के मायने जगह झाड़ बोझा जगह ही बे जदोगा और बाउंज की पत्ती और ही बाउंज की खात हो है बा जितनी उपजाऊ रहेगी बीती है जी की बाजार वाली जी की लेटती जी की खात है ने बा बीते टाइम तक उपजाऊ पर है जो माटी को नहीं बना की राख सके। अपन के देखा बीच को जो को टाइम हो बींगा मायने अंधा धुंध है आपा 1000 तरीके का रासायनिक तत्व है जो को खेतों का मायने छिड़किया अबार आपा अपने खेत की माटी की जांच करावा तो भी है मायने है जो के फलानो तत्व तो भी कम है फलानो भी कम है वो कम है तो बंगी पूर्ति है जो को आपा जदी कर सका जो देसी खाद है जो कि आपा टेमू टेम है आपने खेत के मायने छिड़कता रहा।
0: भाई देसी खाद भी है एक सग सग देखो आपा किसानवाणी का मायने एक वो संदेश सुनावा PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना तो वो रोज की सुनावा तो बिक ऊपर अपन अमल करना चीज है कभी जुखी परंपरागत कृषि विकास योजना है आप भारत सरकार की शुरू करेड़ी है और एक मायने किसाना ने बहुत सा अगर बे मतलब इस तरीके से जिया 50 किसान मिलके जिया समूह बना के और वह अगर मतलब भी तरीके से फार्म भरे तो बन सरकार की तरफ से भी सहायता है जगी मिले। अब देखो क्या आपा जब बाजार से जगी खाद ले रहे वह खाद कई बार तो इसी हुआ कि वह भी नकली मिल जा भाई वह भी असली नहीं है तो वह नकली खाद है जगी की है कि अपने अनाज ने भी तो फायदों को नहीं पहुंचा है और अपनी मिट्टी ने जगी दूषित करे तो किसान भाई ने वही कहना है कि भाई आपने जगी देसी गोबर की खाद है बिको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो एक खेत का मायने जिसको सह बात का धान बाओ कई बार के वह कि कौन सही धान में बढ़िया हो जाए और कोई सो धान बढ़िया कौन लगे तो सगड़ा धान अगर होसी तो बिक मायने अपने फायदो रहसी। और एक साग साग एक बात और है कि किसान वो ही है जखो खेत में जाके मेहनत करे भाई यहाँ कैस कहाँ पा कि अगर आपने ग्रा सुनने की थाली होती तो भी अन्न भी ना खली होती तो ई वास्ते कि अगर किसान है जो अन्नदाता है तो आपा यहाँ बताओ कि आपा जहाँ ट्रैक्टर से बिजाई करा ली और भी कब माइन बाद में कश्यो चलाड़ों को काम ही को नहीं कहीं दवाई छिड़क दियो फिर आजकल की है भांत भांत का जहाँ मान लो

0: चल गया। लावणी में भी अब देखे आपां रबी फसलां में जहां गेहूं है तो गेहूं की कटाई रीपर से हो रही है और बिम पियो खड़ो लगा दियो, खड़ो लगाने बाद में थ्रेसर से गो आप अनाज निकलवा लियो। तो कहना मतलब का आप निनाण से बचने के लिए भाई किसान को मतलब वो है कि वो खेती करी है तो भी कमाइन छह महीना जो आपको पसीनो वाओ और भी से देखो क्या है महीने का जो निरोगो भी रसी खेत में अगर आदमी काम करेगो तो वो निरोगो रसी, नहीं तो की है कि जहाँ आप बैठे रहेंगा तो भी कमाइन तो बैठे रहने नाल सोई फल मिलती अपन, नहीं तो देखो का ऊपर भगवान भी देखे तो आप पहले की बात याद करा तो आप खेतों का मायन जाए ई टेम में जहाँ गड़बात आ तो एक 15 दिन बाद में ही सब्जी वाली टींट सी जाया करती और बीघा बाद में 1.5-2 महीने का मायने जब आप गुआर की बिजाई करता पी टेम तो किएगा बाजरे वाली आवड़ी का मन लोया लागना शुरू हो जाता और जब निनाण काटता आप गुआर को पी टेम किया खेत का मायन खाने मतीरी हो जाया करता। अब आजकल मतीरिया का तो दर्शन होना ही दुर्लभ हो रहा है, क्यों हो रहा है कि आप खेता का मायने तो रसायन छिड़क दियो कभी कमाइन वो आपनों जो परंपरागत बीज है बिन बा जमीन मान रही को नहीं बी कमाइन फल लाग रही है को नहीं। और काकड़िया की बात करा तो काकड़िया आप है तो लागे को नहीं लागे तो मीठा को नहीं हुआ यहाँ लागे जानो फीका है तो कहो मतलब का आप जितो प्रकृति के सागे खिलवाड़ करांगा बी को उल्टो प्रतिफल आपन मिलेगो। अगर आप सही ढंग से अगर प्रकृति के हिसाब से चाल रहे तो प्रकृति ने अगर आप जमीन का मान एक बीज गिरे तो भी का जहर भी जजगा अपन वापिस जजगा मिलेगा।
1: भाई ई योजना को उद्देश्य वही है कि अपा अपनी जी की परंपरागत खेती है ब करता रहा बी के सागे सागे देखो के वक्त के सागे जिकी नई नई जी की तकनीकी आ रही ने बंको आप इस्तेमाल करा लेकिन आपा अपने खेत के मायने कोई तरीके की जिकी आज का आधुनिक युग के मायने लोगों के देखू देख या फिर बाजार है जो खेती के ऊपर हावी हो है और बिक बाजार के मांग के अनुरूप अगर जी आप अपने खेतों के मायने कोई भी तरीके को रासायनिक तत्व है जो छिड़का तो देखो के वो सके लिए ही हानिकारक है खुद के लिए किसानों के लिए भी पशुधन के लिए भी और खेत की माटी के लिए भी। तो आपा अपनी जी की खेती है जी की परंपरागत तरीकों जिया करता आया बिया करा लेकिन बी के सगे सगे जी की नई नई जी की तकनीकी आ रही बी को आपा जरूर है जो को काम में ले सका लेकिन आ नहीं कभी तकनीकी के सगे सगे आपा है जो को एकदम बाजार के ऊपर डिपेंड हो जावा और बाजार जिया के बी तरीकों आपा अपने खेतों के मायने जान भी ना गा रासायनिक तत्व है जो को छिड़क की और आपा अपनी खेत की माटी के सगे खिलवाड़ करा तो आ चीज है जी की आपने खेत की माटी के लिए भी अच्छी को नहीं आपने लिए भी अच्छी को नहीं और वो अगर जे रासायनिक तत्व आपा खेतों के मायने छिड़क रहा तो वह बीमारी है जी की मोल ले के आ रहा
0: भाई बीमारी मोल ले के आ रहा। फिर दूसरी बात का अपन शुद्ध अनाज को नहीं मिल रही तो आज की परंपरागत कृषि विकास योजना है एक मायने जहाँ 50 किसानों को समूह बना दियो और वे 50 एकड़ मान लियो या 20 हेक्टर मान लियो वो क्षेत्र कम से कम कवर होना चाहिए है तो बन सरकार है जो कि देखो 3 वर्षा में किसानों ने प्रति हेक्टर 31,500 रुपये वित्तीय सहायता भी देवे। तो देखो योजना से अपन जुड़नो चीज है और एज का रसायन है आ से दूरी बनानी है अपने क्योंकि आपने खेत की मृदा आ रसायन से इतनी प्रदूषित हो जाएगी का आप खेत में जावांगा तो बैठे एक तो मान लियो बारिश आवे जना सोंधी सोंधी महक आवे अपनी बालू रेत की और एक अब रसायन अंधा दून छिड़केड़ा है तो बीजा बताओ वह महक हटूंगा असि तो ई वास्ते की है कि आपने रसायना से दूर रहना है और जखी आपने स्ट्रेडी गोबर की खाद है या केंचुआ की खाद है वह ज्यादा से ज्यादा काम में लो और हर काम है जो बढ़िया तरीके से करो क्यों बढ़िया तरीके से अगर आप कृषि तो अपन अनाज भी बढ़िया मिलसी और अनाज बढ़िया मिलसी जना अपनो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहसी। और अब देखो चर्चा तो आप और भी कर सिया पर ब्यों पहली एक लोक रचना सुना दिया तो सीमा मिश्रा और राकेश की आवाज में सुनो आ ठावड़ी।

अभी आपां सीमा मिश्रा और राकेश की आवाज में वो मीठो सो लोकगीत है जो सुनियो। और अब देखो अपनी चर्चा ने आगे बढ़ावा क्या आप मर्दा ने सुरक्षित करने की बात कर ली। अब

0: के बाद में कि एक बीज की बात करा क्या करा क्या है वो दो बीज खेत ने ले बैठे। तो एक तो अपन की है कि बीज जो भी बीज लेवा चाहे वो बाजार से लेवा चाहे घर रखेड़ो है तो भी बीज में ध्यान रखड़ो है कि बीज घुनी जेड़ो नहीं होना चीज है फूटेड़ो बीज नहीं होना चीज है। एक बीज को जो प्राकृतिक रंग है या बाजरी ई रंग की हो सी मूंग ई रंग का हो सी मोट ई रंग का हो सी तो वो रंग अगर फरकारे यानी कालो हो रहे को मतलब आप बीज है जो खराब हो गया। और एक क्या है जखा बीज ने उपचारित करने का तरीका है वह सही ढंग से अपन अपनाना है। एक सागे सागे एक बात को और ध्यान रखा कि जितनी मात्रा में बीज अपन गेरनो है जितनी मात्रा में बीज अपन गेरो अगर बीज ने जाडो गेर दियो तो भी वो बीज ने सांस लेने जगह मिलेगी को नहीं तो बटा फसल की आवेगी। एक का आप बीज इतो छिदो गिर दियो कह पुंटा है जिसका आंगलिया गिन लियो तो बटे भी फसल बढ़िया क्या उसी। तो अपन बीज को भी बढ़िया चयन करना है और बीज की बिजाई को भी ध्यान रखना है।
1: भाई जातियों पर क्यों जो को बीज हो ने बिकी तो देखो ओड को नहीं हो भाई। और आपा ठहरिया किसान बहन भाई तो आपा के कह अपने खेत के मायने चोखो जो को नाज हो वे तो बिंगा जगह चोखा बूंटा या चोखा जगह सीटा हुए ने बे के छांट की और नाके राखा बिंग आगे आने वालों जकी फसल लिया बिजाई करा बी टाइम है जो बंगो जो बीज अगर जी आप काम में लिया जितो के बहुत चीज है जकी आपने खेत के मायन तैयार होएडी आपने जो को अठे को वातावरण है बी के मायन तैयार होएडी और अपनी आंखों के सामने सारी चीज है जकी होवे तो भाई जिया जकराने को जो को छिट्टो होवे बाजरे को जकराने का जो को बीज है जिकेगा के खूब लंबा लंबा तो सीटा हुए और बंगो जो डोको है जो भी कह गए जंटियांग मांगी निकलने तैयार हो जाए चोखा अगर जे मे उड़ा हुए तो बंगी है जकी कड़बी भी चोखी हो और बंग है जो सीटा ही जका भी खूब लंबा लंबा और बंग चोखो है जो दाणु है जो भरवा मोटो तो बे बीसिया जका अगर जे कोई भी किसान बहन भाई ही जका आपके खुद के घर बीज तैयार करके और वो अगर जे काम में ली बिंगी तो देखो ओडी को नहीं हो और जगह किसान बहन भाई भाई बी तरीके को बीज उपलब्ध नहीं है तो बे के आजकल आपके खेत की माटी की जांच करा की और खेत के पानी की जांच करा की बिक अनुरूप जका कृषि विशेषज्ञ जको बीज बता मैंने वो बीज है जको आपने के बाजारों लेनो चाहे और वो बीज लियावा बी टेम आपने बहुत सावधानी के सागे के आजकल के बाजार के मैंने ज्ञान बिना का जगह है ने थैलिया में अब्बा के मैंने किसान मैन भाई के भाई बाजरो दे दो तो बे कोई सी थैली है जिकी पकड़ा दी जिके हम बांगे दुकानदार के पांच पीसा फालतू बचता हूं मैंने बा पकड़ा दी तो अपन अपना जगह कृषि विशेषज्ञ जिकी राय दी वो ही बीज है जिको काम में लेनो चाहे और बिल है जिको पक्को लेनो चाहे ताकि आगलो कोई भी तरीके की गड़बड़ है जिको किसान बहन भाइयों के सागे नहीं कर सके। और देखो बतलावन तो आपा खूब सारी और भी करता लेकिन वक्त है जिको आपा ने और ज्यादा बतलावन की इजाजत कौन दे तो किसान वाणी आज को कार्यक्रम अठाई तनी औजू मिलन तनी भाई अरविंद ने
0: और भाई राजकुमार ने सीख दिराव करा
1: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आपने सुपीरिया की आवाज में ये राजस्थानी लोक रचना सुनी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। आवाजें हैं सीमा मिश्रा और साथियों की।

श्रोता भी सुन रहे थे लोक कलाकार दयाराम और साथियों को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। इस समय आपको बता दें, आप सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र चूरू से।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: अंतरालों के बाद श्रोताओं का स्वागत है। श्रोता अभी सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। समय मिलाइए, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म

0: संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।
1: तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी।

श्रोता सुन रहे हैं नागिन फिल्म में आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को, गीतकार वर्मा मलिक, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

फिल्म का नाम है जीने की राह, आवाज मोहम्मद रफी की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: श्रोता अभी सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म कभी कभी में।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ

0: चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे।
3: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
6: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: इन अंतरालों के बाद श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम में। श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं कर्तव्य फिल्म का गीत।

0: श्रोता सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म कर्तव्य में। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, आकाशवाणी केंद्र चूरू से ओनली ऑन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
0: इस अंतराल के बाद श्रोताओं का कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: इस अंतराल के बाद श्रोताओं का फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। अंतराल से पहले आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म का गीत, आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोता एक खूबसूरत सी युगल आवाज़ें सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था गीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

0: श्रोता कार्यक्रम के आखिर में सुन रहे थे लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम था राजा और रंक। इस गीत के साथ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब श्रोता सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 News@9 का प्रसारण।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि

0: वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह आंतरिक कामना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
2: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए

0: ये सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
5: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक

0: स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets. In third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
4: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected

ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आज की लोक कलाकार हैं शकुंतला भाटी और साथी।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: अंतरालों के बाद श्रोताओं का कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। श्रोता सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र चूरू से। आज आप सुन रहे हैं लोक कलाकार शकुंतला भाटी और साथियों को।

0: श्रोता अभी राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में शकुंतला भाटी और साथियों को सुन रहे थे। अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी केंद्र चूरू से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले कार्यक्रम चित्र भारती।
1: ये सुनिए राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों

की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई, जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये ठुमरी गाई थी। ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई, बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में

0: ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955।
1: झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल।
0: सन 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन गया।

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये, और दूसरा गाना था ये।

1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी।

वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: चूंकि यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया, तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती। सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे।
1: रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला। जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे। जाने कैसे सपनों

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई

0: को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

जिसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की,

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई
1: फिल्म सूरज।

सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh

0: and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
1: Dr. Vivek Karmahe apni gayan ki shuruaat raag Shri se kar rahe hain. Vilambit Rashna Tilwara taal mein nibaddh hai jiski bool hai वारी जाऊं रे तुम पे. द्वित रचना तीन ताल में है जिसकी बोल है चलो रे माई राम सिया दर्शन. आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा.
0: डॉक्टर विवेक कर्महे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री. द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे. The Drut composition is in Teen Taal with the lyrics Chalo Re Mai Ram Siya Darshan. Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: राग श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसके बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashvani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.
2: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति

0: काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।